0: मीडियम वेव 1500 चिरहर्ट्ज़।
1: और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षी बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग

0: साथ ही समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपए और डीजल 94.08 रूपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपए और डीजल की 96.07 रूपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपए और डीजल की 96.11 रूपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
3: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashwani News, Oslo.
2: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden

Standard. आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में संगीत का रिश्ता हमेशा से अटूट रहा है। ऐसे में अगर आप तनाव से दूर

और खुशहाल रहना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके संगीत यानी म्यूजिक से रिश्ता कायम कर लीजिए। कहने का मतलब यह है, अगर आप संगीत सुनना पसंद करते हैं तो इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो संगीत सुनिए। संगीत की खूबी भी यही है कि जब चाहे जैसा चाहे सुने और फिर अपना मूड बदल लें। कह सकते हैं कि संगीत हमारी जिंदगी के हर पल का साथी है, हमारा हमसफर है। जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक खाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे कितने भी बिजी हों, कितने भी व्यस्त हों, हम यही कहेंगे कुछ समय अपने लिए निकालिए, संगीत का संग अपनाइए। वजह कई शोध भी यही बताते हैं कि संगीत का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोते वक्त आपको गाना सुनना चाहिए या खाते वक्त गाना सुनना चाहिए, तो बस संगीत के लिए सोचिए मत। हर वक्त आप संगीत सुन सकते हैं। सोते समय सुखदायक संगीत सुनना शुरू कर दीजिए। एक सुखद नींद के लिए सोने से पहले अगर आधा घंटा आप संगीत सुनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आप पाएंगे कि तनाव मुक्त नींद और पर्याप्त नींद में ये कितना सहायक है। धीमा संगीत सुनने से आप आराम महसूस करते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, संगीत से चिंता भी दूर होती है और इससे आपको स्वस्थ जीवन मिलता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

थी शहनाई। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। संगीत के इन सुनहरे पलों को और भी शानदार बनाने के लिए बना रहे आकाशवाणी का साथ। जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत में ढेर सारे बदलाव आए हैं। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में संगीत न केवल मनोरंजन

रहा, बल्कि इसने भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आधुनिकता के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1936 में अपनी स्थापना के बाद से संगीत में आए बदलावों को ऐसे समझा जा सकता है कि हम कह सकते हैं 1950 का जो दशक था वो शास्त्रीय संगीत का संरक्षण का दौर था। राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम 1952 में 20 जुलाई 1952 को राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक को आम जनता तक पहुंचाना और संरक्षित करना था। नेशनल ऑर्केस्ट्रा, दिल्ली में नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना भी हुई, जिसका नेतृत्व महान सितार वादक पंडित रविशंकर ने किया था। शास्त्रीय संगीत के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने हेतु 1954 में पहला रेडियो संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया और आज तक इसके 67 यानी 67 से ज्यादा संस्करण पूरे हो चुके हैं। सुगम और फिल्म संगीत का उदय होता है तब आकाशवाणी की बात करें तो विविध भारती की शुरुआत 3 अक्टूबर सन 1957 को शुरू की गई विविध भारती सेवा। इसके माध्यम से फिल्मी गाने, सुगम संगीत और हवा महल जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों ने संगीत के प्रति आम लोगों का नजरिया बदल दिया। हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम शुरुआत किया गया। ये कार्यक्रम 15 मिनट के हल्के फुल्के रेडियो नाटक और स्किट्स पर आधारित था। इसमें भारतीय लोक कथाओं, सामाजिक विषयों और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को नाटकीय और रोचक अंदाज में पेश किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंच चुके इस कार्यक्रम का 25 अक्टूबर 1972 को 1000वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। तो आप जान सकते हैं कि आकाशवाणी का ये सफर इतना लंबा आपके साथ यानी श्रोताओं के साथ के बगैर तो हिट हो ही नहीं सकता। आपकी पसंद ही तो आकाशवाणी के सफर में साथी बनी। हवा महल कार्यक्रम भारतीय रेडियो के स्वर्णिम दौर का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आकाशवाणी ने भारत के दूर दराज के इलाकों के लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वर्तमान में यह 23 भाषाओं और 189 बोलियों में संगीत और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। हाल ही में 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर पूर्व भारत की संगीत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए विशेष नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक कंसर्ट भी आयोजित किए गए। अब आधुनिक बदलावों की बात करें तो डिजिटल और एप्स में ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ संगीत का सफर आज मोबाइल एप्स यानी न्यूज ऑन AIR और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया है। नई सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता रखी गई। अपनी 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी ने नए युग के अनुरूप कार्यक्रमों के लिए एक नई सिग्नेचर ट्यून और जिंगल्स बनाने की प्रतियोगिता भी शुरू की। आधुनिक श्रोताओं के लिए अब संगीत और बातचीत को आकाशवाणी पॉडकास्ट के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है। आकाशवाणी आज भी अपनी परंपराओं को संजोए हुए है और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सच्चा संवाहक माना जा रहा है। तो यहां हम आपसे बातें कर रहे थे आकाशवाणी के 90 सालों के सफर की कि संगीत में कैसे कैसे बदलाव हुए, लेकिन आकाशवाणी हमेशा अपने श्रोताओं से जुड़ा रहा। और हम तो यही कहेंगे आकाशवाणी का ये सफर हमारे साथ यूं ही चलता रहेगा।

रंग की बेला। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। दौर बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और बदलता है समाज। आज के भारत में महिलाओं की शक्ति और उनकी भूमिका में क्रांतिकारी बदलाव आया है। नारियां, महिलाएं अब केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि देश के विकास का मुख्य आधार बन चुकी हैं। आज की नारी शक्ति में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे निर्णय लेने की शक्ति। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों से लेकर पंचायत स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राजनीति की बात करें तो संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण और महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त और रक्षा का कार्यभार संभालकर महिलाओं ने साबित कर दिया कि वो देश की दिशा तय करने में सक्षम है। प्रशासन की बात करें तो IAS, IPS और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या और उनके काम करने के जज्बे ने व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता बढ़ाई है। आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज की महिला सिर्फ नौकरी नहीं कर रही बल्कि नौकरियां दे भी रही है। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत के कई सफल स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न कंपनियों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और बहुत सफलता से कर रही हैं। ग्रामीण सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों और के माध्यम से गांव की महिलाएं छोटे उद्योगों को वैश्विक पहचान दिला रही हैं। जी हाँ, NGOs में इतना काम होता है, इतनी सारी महिलाएं हैं जो गांव की, पंचायत की और आसपास के एरिया की सारी जो लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृति हैं, उनको पहचान दिलवा रही हैं और विश्व यानी वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रही हैं। इस बारे में बात करते रहेंगे, सुनते हैं, साथ साथ गीत भी सुनते चलते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत दिलीप मंदिर फिल्म से था और बात चल रही थी महिलाओं की आज की नारी शक्ति की। अब मंगलयान हो या चंद्रयान, इसरो की महिला वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयां भी इनसे दूर नहीं है। स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती रुचि नए भारत की आधुनिक सोच को दर्शाती है। डिफेंस की बात करें तो एक समय था जब सेना में महिलाओं की भूमिका सीमित थी, लेकिन आज महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, सीमाओं पर तैनात हैं और युद्धक भूमिकाओं में अपनी बहादुरी का परिचय दे रही हैं। ओलंपिक हो या विश्व चैंपियनशिप, देश को सबसे ज्यादा गर्व के क्षण महिला खिलाड़ियों ने दिए हैं। जी हां, खेल के मैदान में परचम लहराया है हमारी महिला खिलाड़ियों ने। क्रिकेट से लेकर कुश्ती और बैडमिंटन तक भारतीय बेटियां वैश्विक मंच पर तिरंगा लहरा रही हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो आज की महिलाएं शिक्षा के माध्यम से पुरानी कुरीतियों को चुनौती दे रही हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और समाज में समानता, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा करती हैं। आज की नारी बेचारी नहीं बल्कि शक्तिशाली है। वो अपनी परंपराओं को साथ लेकर आधुनिकता के पथ पर अग्रसर है। जैसा कि कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। आज का भारत इसी मंत्र को हकीकत में बदल रहा है।

0: देश में गंगा बहती है, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज सुनी आपने ये गीत सुना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: की धड़कन हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए एफएम गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त राधा पाठक। बातें हमने इतनी सारी की हैं और ढेर सारी बातें हमारी बाकी भी हैं। और दरअसल महिलाएं हैं जो, क्योंकि हमारा ये जो घर आंगन कार्यक्रम है ये खास महिलाओं के लिए है और हम चाहते भी हैं कि महिलाएं काम करते करते जो दिन भर की थान होती है वो हमारे इस कार्यक्रम के साथ थोड़ा सुकून महसूस करें। हम बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं अपनी महिला सखियों के लिए और हम चाहते हैं कि वो ये सारी चीजें जान पाएं और जागरूक रह पाएं समाज के प्रति। और हम बता दें अपना ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। fmgoldga@gmail.com, जी हाँ, आप हमसे रूबरू हो सकते हैं क्योंकि जो हमारी वार्तालाप है, हमारी बातचीत है, वन वे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपका जवाब ईमेल पर आना चाहिए कि आपको क्या लगता है इस कार्यक्रम में और क्या होना चाहिए, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है। तो ये हुई ना हमारी बातचीत का पूरा जो स्वरूप है वो यही रहना चाहिए। अब बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आजकल जहां देखिए मोबाइल सबके हाथ में है, घर हो तो पति पत्नी सास ससुर दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची बच्चे भाई बहन सब अलग अलग मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। जी हाँ, सबके हाथों में मोबाइल है, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक, कुछ भी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपसी बातचीत जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। किसी भी रिश्ते में, हर रिश्ते में यही चल रहा है। अब घर की क्या बात करें, आप बाहर निकलिए, आप किसी भी सरकारी वाहन में आइए, मेट्रो से आते हैं तो देखिए मेट्रो में हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाली महिलाएं हो, ऑफिस जाने वाले युवक हो, पुरुष हो, सबके हाथ में मोबाइल है। महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं वो भी काम किया, कुकर में सीटी आने वाली है, सीटी जब तक आएगी तब तक चलो मोबाइल देख लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो ठीक नहीं है। आज की दुनिया में मोबाइल, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर चाहते हैं सुकून और शांति और परिवार में आपसी बातचीत बनी रहे तो ऐसे में डिजिटल उपवास यानी कुछ समय के लिए स्क्रीन और इंटरनेट से दूरी बनानी ही होगी। मानसिक और शारीरिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है। लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है, डिजिटल उपवास करने से मन को आराम मिलता है और चिंता कम होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप अगर रात में मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद के हार्मोन को बाधित करती है। जो डिजिटल उपवास जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल उपवास हो, नींद गहरी और बेहतर हो सकती है। यानी आज के जमाने में जो कहते हैं ना उपवास बहुत जरूरी है शरीर के लिए, हफ्ते में एक दिन उपवास रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है, तो ये डिजिटल उपवास भी ना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। इससे रिश्तों में सुधार आता है क्योंकि जब हम स्क्रीन से दूर होते हैं तो परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक बातचीत बढ़ जाती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और भावनात्मक जुड़ाव बेहतर होता है। लगातार बैठकर स्क्रीन देखने से आंखों में, गर्दन में, पीठ पर असर पड़ सकता है, तो डिजिटल उपवास से शरीर को तो आराम मिलता ही है, एक्टिव रहने की प्रेरणा भी मिलती है और आसपास आप नजर डाल पाते हैं। अब मेट्रो में आप मेट्रो के सफर का मजा लीजिए ना, गाड़ी में बैठे तो बाहर का मौसम का आनंद लीजिए, लोगों को देखिए, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, क्यों मोबाइल में या स्क्रीन देखनी है। डिजिटल दुनिया से हटकर हम खुद के साथ समय बिता पाते हैं, इसे सोचने समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। ये किया कैसे जाए, बहुत मुश्किल लग रहा है ना, मुश्किल, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। रोजाना कुछ घंटों के लिए फोन से दूरी बना लें, सोने से एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें, हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे रखें, ना जरूरी फोन और मैसेज आप देख लीजिए लेकिन सोशल मीडिया के जो बाकी प्लेटफॉर्म है उनसे दूरी बनाइए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन ऐसा करें, नोटिफिकेशन को सीमित करें। हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल उपवास कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइस है। थोड़ी सी दूरी आपको ज्यादा सुकून, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन दे सकती है।

अनुराधा फिल्म में ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। और अब देखिए, ट्वेल्थ के एग्जाम तो हो ही गए थे, अब तो रिजल्ट भी आ चुका है और सीयूटी के एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के रिजल्ट के बाद। और बच्चों के दिमाग में ये हो गया क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। नीट का एग्जाम भी होने को है, सीयूटी के एग्जाम चल ही रहे हैं, फिर भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब हमारा करियर क्या हो, क्योंकि बहुत जद्दोजहद चलती है आपके रिजल्ट और आपकी अगली लाइफ के बारे में, क्या आपका करियर होना चाहिए। तो एआई में करियर, हम आपको बार बार बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाना आज के समय का सबसे स्मार्ट फैसला हो सकता है। ये केवल कोडिंग तक सीमित नहीं है बल्कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी है। आजकल कुछ ऐसे भी करियर हैं जिन्हें किसी भी स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो चुन सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स है, एआई, डेटा की समझ रखने वालों के लिए इसकी हर क्षेत्र में जरूरत है, हर सेक्टर में जरूरत है। यूआई यूएक्स डिजाइन, एप्स और वेबसाइट के डिजाइन को बेहतर बनाने का काम ये भी कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक फुल टाइम करियर बन चुका है। और एआई की जो हम बात कर रहे हैं उसमें है टेक्निकल और इंजीनियर रोल्स हैं, कोर टेक है, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल के। ये इंजीनियर्स ऐसे एल्गोरिदम और मॉडल बनाते हैं जो डेटा से सीख सकते हैं, इसके लिए पाइथन और मैथ की अच्छी समझ होनी चाहिए। एआई डाटा साइंटिस्ट हैं, इनका काम डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के रुझानों का पता लगाना है, एआई मॉडल को बेहतर बनाना है। एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हैं, ये पूरे एआई सिस्टम का डिजाइन और ढांचा तैयार करते हैं और वो बिजनेस में कैसे काम करेगा ये भी सिखाते हैं। नए जमाने के जो एआई रोल्स हैं यानी इमर्जिंग रोल्स हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये सबसे नया और चर्चित रोल है। इसमें एआई जैसे चैट जीपीटी और भी चीजें हैं सही से काम करवाने के लिए सटीक और प्रभावशाली निर्देश प्रॉम्प्ट लिखना सिखाया जाता है। इसके लिए कोडिंग से ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग जरूरी है। एआई एथिसिस्ट यानी नैतिकता विशेषज्ञ, एआई पक्षपाती ना हो और नैतिक रूप से सही काम करे ये सुनिश्चित करना इनका ही काम है। फिलोसफी और लॉ के छात्रों के लिए ये अच्छा क्षेत्र है। एआई कंटेंट क्यूरेटर, एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट की जांच करना और उनसे ह्यूमन टच देना। जी हाँ, ह्यूमन टच भी तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यही चाहिए होता है कि कोई भी करियर हो लेकिन वो हमें कामयाबी के साथ साथ हमें सुकून भी दे सके।

फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब देखिए ना, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, अब महिलाएं ये सोच रही हैं, अब देखिए ना महिलाएं इतना काम कर रही हैं कि घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, और अगर घर भी देखना है, बच्चों की छुट्टियां हो गई तो क्या किया जाए, बच्चे बिजी भी रहे और क्रिएटिविटी भी बनी रहे। तो हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात लेकर आए हैं कि गर्मियों की छुट्टियों को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। गर्मियों की छुट्टियां माँ और बच्चों की बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय होती हैं। इस समय को यादगार और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ मजेदार क्रिएटिविटी यानी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, जैसे फायरलेस कुकिंग, बच्चों के साथ मिलकर सैंडविच, फूड चार्ट, लेमनेड और ओरियो शेक जैसी चीजें बनाएं, क्योंकि फायरलेस है, इसमें बच्चों को खतरा नहीं है कि वो जल सकते हैं, उन्हें किचन की बेसिक समझ हो जाएगी। DIY और क्राफ्ट, पुराने सामान से कुछ नया बनाना, पेंटिंग या क्ले मॉडलिंग, आप घर की एक दीवार को उनके आर्ट वर्क के लिए रख सकते हैं कि बच्चे आप जो बनाओगे ना इस दीवार पे लगाया जाएगा। बनाइए, लगाइए अपनी क्रिएटिविटी और बनाइए। किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, छोटे गमलों में धनिया, पुदीना और एलोवेरा लगाना सिखाएं, बच्चों को पानी देने की जिम्मेदारी दें, धूप में रखने की जिम्मेदारी दें, बच्चों को गार्डनिंग की समझ आएगी। बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, स्क्रीन फ्री मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे लूडो, कैरम, चेस, बिजनेस जैसे खेल दोपहर के समय के लिए बेहतरीन है। ये मत सोचिएगा कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया या टीवी में लगा दिया, स्क्रीन फ्री मनोरंजन बहुत जरूरी है आज के समय में। कहानी सुनाना, अपने बचपन की कहानियां, दादी नानी की कहानियां सुनाएं, यानी उसी समय को वापस ले आए जो बीत चुका है। हमारी दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी ना, कब कहां इतना स्क्रीन देखते थे, होता ही नहीं था कुछ भी।

वो समय आना चाहिए जिसे बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को भाषा का ज्ञान होता है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। घर को ठंडा और खुशनुमा रखें, इंडोर पिकनिक मनाएं, लिविंग रूम में चादर बिछाकर पिकनिक जैसा माहौल बनाएं, साथ में पसंदीदा स्नैक्स बनाएं और बच्चों के साथ गप्पे मारें खूब ढेर सारे, पानी का खेल खेलें, शाम के समय बालकनी आंगन में टब में पानी भरकर छोटे छोटे बच्चों के साथ मस्ती की जा सकती है। आजकल तो बड़े बड़े जो ये जो पानी में टब आ रहे हैं जिसमें बच्चे आराम से खूब इंजॉय करते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी होती है, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो कोडिंग, पेंटिंग या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सिखाया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और ऑफलाइन भी हैं। बच्चों के लिए डेली रूटीन जरूर बनाना चाहिए जिसमें जल्दी उठना, थोड़ा होमवर्क करना, थोड़ा खेल का समय, इससे वो अनुशासित रहेंगे और बोर भी नहीं होंगे। समर कैंप भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और ट्रेन में कहीं घुमाइए, ट्रेन का मजा लीजिए और बच्चों को सफर का आनंद ले कहीं घूमने निकल जाइए।

आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज में अनोखा रिश्ता फिल्म से। अब गर्मियों की बात चली गई है तो गर्मियों में घर को ठंडा रखना भी एक बहुत बड़ी अब देखिए बच्चे घर में रहेंगे, आप भी घर में हैं, अब घर को ठंडा कैसे रखा जाए। पूरा टाइम एसी चलाना ना तो सेहत के लिए अच्छा है ना कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। बढ़ती गर्मी से आप परेशान हैं, तपती धूप में कहीं बाहर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो दिन भर से तपे घर में चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तेज धूप के कारण दीवारें भी तप रही हैं, घर का तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे करते हैं घर की दीवारों पर जिन पर सीधी धूप पड़ती है उन्हें हरे नेट से ढक दें या शेड लगवा दें। दीवारों को धूप में गर्म नहीं होने देना है ताकि घर का तापमान न बढ़ पाए। घर की बाहरी दीवारों पर हीट प्रूफ पेंट करवाने से भी तापमान कम हो सकता है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप गर्मी में घर को ठंडा रख सकती हैं। गर्मी के दिनों में भारी पर्दे लगवाने चाहिए। गहरे रंग के पर्दे तेज सनलाइट को गर्म हवाओं को कमरे में आने नहीं देते जिससे कमरे का तापमान कम रहता है। घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी लगाइए, पौधे के अंदर तापमान को कम करने में मदद भी मिलती है। ठंडे पानी से दो बार घर में पोंछा भी लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। घर साफ रहता है तो मौसम और तापमान कमरे का ना ठीक रहता है, आपको भी अच्छा लगता है। साधारण पीले बल्ब जो है बहुत गर्मी पैदा करते हैं, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, ये ठंडे होते हैं। सूती कपड़ों का प्रयोग कीजिए, बेडशीट तकिए कवर सिर्फ सूती ही करें। छोटी छोटी टिप्स हैं जिससे आप इस्तेमाल करके घर को ठंडा रख सकती हैं और खुश रह सकते हैं।

0: वो चक्कर फिल्म में आपने सुना आशा भोसले और उषा मंगेशकर को। कार्यक्रम घर आंगन से अब राधा पाठक को दे इजाजत, नमस्कार।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों

0: रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in Denmark in 2022. Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement.
2: EFTA countries se Bharat mein agle 15 varshon mein $100 billion investment aur 1 million jobs create karne ka lakshya hai. Ye ambitious target hai lekin achievable hai. और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है।
1: इंडिया एंड स्वीडन हैव एम्फसाइज्ड दैट कोऑपरेशन विल डिफाइन द पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड अ सस्टेनेबल फ्यूचर एट अ मोमेंट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of growing geopolitical uncertainty, energy insecurity and economic fragmentation, the world faces a defining choice of either retreating into narrow national approaches or strengthening partnerships. In the article published today in a national daily, both the Prime Ministers noted that as the United Nations marks its 80th anniversary, the value of international cooperation and multilateralism has become even more evident. A high-level meeting of the Central Zonal Council has started at Jagdalpur in Chhattisgarh. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah is chairing the meeting. Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Uttarakhand and Chhattisgarh are participating in the 26th meeting of the Central Zonal Council. Union Home Secretary, Director of the Intelligence Bureau, Directors General of Police of the four states, along with senior police and administrative officials, are also attending the meeting.

0: कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो साथियों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित

1969 की एक भारतीय हिंदी हॉरर फिल्म थी। इसमें अभिनय किया था सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी जैसे बड़े सितारों ने। फिल्म की कहानी एक ऐसे राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है जो कि लाल दुल्हन के परिधान पहने हुए महिलाओं का अपहरण और हत्या करता है। दोस्तों, जानी दुश्मन 25 मई 1969 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई थी और ये फिल्म समीक्षकों से इसे मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षाएं मिली थी। साथियों, व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो इसे बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था।

दोस्तों ये अपने समय की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और बात करें इस फिल्म के अभिनय की तो सुनील दत्त थे लखन के रूप में, संजीव कुमार थे ठाकुर के रूप में, जितेंद्र अमर के रूप में थे, शत्रुघ्न सिन्हा शेरा के रूप में, स्पेक्टर के रूप में थे विनोद मेहरा, चंपा के रूप में थी रेखा, रेशमा के किरदार में थी रीना रॉय और लखन की छोटी बहन के रूप में थी गौरी नीतू सिंह, योगिता बाली ठाकुर की दुल्हन के रूप में थी, शांति के रूप में बिंदिया गोस्वामी थी जो कि शेरा की छोटी बहन बनी थी, सारिका बिंदिया के रूप में थी, विक्रम मंकादर शंकर के रूप में थे और प्रेमनाथ पुजारी के रूप में था। दुल्हन जिसका अपहरण होता है और वो जो अपहरण करते हैं उसके रूप में थे अमरीश पुरी, रजा मुराद ठाकुर ज्वाला प्रसाद के रूप में थे, शक्ति कपूर एक दुल्हन के साथ घोड़े पर सवार व्यक्ति के रूप में थे, मैकमोहन टैक्सी ड्राइवर के रूप में था और जगदीप नाथुराम के रूप में थे।

दोस्तों अब लेते हैं आपके संदेश जो कि आपने हमें बड़े प्यार से भेजे हैं। सबसे पहला संदेश आता है हमारे पास वीरम गांव गुजरात अजीत भावसार प्रमिला भावसार जी का। अगला संदेश जो हमारे पास आया है वो आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक और केथल हरियाणा से मधु नायक जी का। और अगला

गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी जी का। इन्होंने भी सही फिल्म पहचानी है और आप सभी ने हमें फिल्म को पहचान कर संदेश भेजे हैं। अगला संदेश है हमारे पास नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाकर निर्मला नुहावकर विशाल नुहावकर जी का। और अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और हमारे पास जो हमारा अगला संदेश है वो है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

दोस्तों, इस फिल्म के अधिकांश जो दृश्य थे वो जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र उधमपुर जिले के चेनानी और पटनी टॉप हिल स्टेशनों जैसे स्थानों पर फिल्माए गए थे।

0: from home? High salary? But they clip me. Arre wah!
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम. यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनिए समाचार.
4: नमस्कार, ए आकाशवाणी. खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर. पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओस्लो विच तीजे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन विच शामिल होणगे. पेट्रोल ते डीजल दियां कीमतां विच करीब 90 पैसे फी लीटर दा वादा कीता गया. सुप्रीम कोर्ट ने जनतक थावां ते फड़े गए लावारिस कुत्तियां नूं टीकाकरण जां नसबंदी कीते बिना छड्डण ते अपने पहलां दे निर्देश नूं वापस लैण तों इनकार कर दित्ता है. पंजाब विच दो वख वख सड़क हादसों विच पंज लोकां दी मौत. पंजाब ते हरियाणा च आउंदे दिनां च लू दी स्थिति बनी रहेगी. ज्यादातर जिलिआं विच पारा होर वधण दी संभावना. आईपीएल क्रिकेट विच अज राजस्थान रॉयल्स दा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स नाल होएगा. हुण खबरां विस्तार नाल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ओस्लो विच तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन विच शामिल होणगे. इस सम्मेलन दा उद्देश टेक्नोलॉजी, नवीआउणयोग ऊर्जा, रक्षा, स्थिरता अते व्यापार वर्गे खेतरां विच नॉर्डिक देशां नाल भारत दी रणनीतिक भाईवाली नूं मजबूत करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंज नॉर्डिक देशां दे अपने हमरुतबावां दे नाल अज तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन विच शामिल होणगे. इह सम्मेलन 2022 विच डेनमार्क दे कोपनहेगन विच होए पिछले सम्मेलन तों बाद भारत अते नॉर्डिक देशां विचकार वधे होए खेतरी सहयोग नूं अगे होर वधाएगा. इस दौरान तकनीक अते नवीनता, स्थिरता, नवीआउणयोग ऊर्जा अते डिजिटाइजेशन दे खेतरां ते ध्यान दित्ता जाएगा. TEPA दे लागू होण नाल सम्मेलन डूंघे व्यापार ते निवेश संबंधां नूं वधाउण दी कोशिश करेगा. इस ब्लॉक नाल भारत दा दवल्ला व्यापार इस समय 19 अरब डॉलर है. यह सम्मेलन खेतर नाल साडे बहुपक्षी सहयोग नूं वधाउण विच मदद करेगा. यह आपसी हित दे आलमी अते खेतरी मुद्दयां ते विचार वटांदरा करन दा मौका भी प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री तीजे भारत नॉर्डिक सम्मेलन दे मौके ते डेनमार्क, आइसलैंड अते फिनलैंड दे प्रधानमंत्रियां नाल दवल्लियां मीटिंगां भी करनगे. प्रधानमंत्री शाम दो दिना सरकारी दौरे लई इटली दे रोम पहुंचणगे. इस दौरे दा उद्देश व्यापार, निवेश अते तकनीकी नवीनता विच दवल्ले सहयोग नूं मजबूत करना है. भारतीय भाईचारे दे मैंबरां विच खुशी ते उम्मीद देखण नूं मिल रही है. अज ते भलके तक होण वाला यह दौरा इटली दे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दे निजी सदे ते हो रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम दे राष्ट्रपति तो लाम नाल मुलाकात की थी अते दोवां देशां विचकार रक्षा सहयोग नूं मजबूत करन ते सहमति प्रगटाई. एक सोशल मीडिया पोस्ट विच रक्षा मंत्री ने कहा कि दोवां देशां विचकार वधाई गई व्यापक रणनीतिक भाईवाली महत्वपूर्ण है. श्री सिंह ने कहा कि भारत अते वियतनाम सांझियां कदरां कीमतां दे आधार ते रक्षा, सुरक्षा ते खेतरी स्थिरता विच नजदीकी सहयोग सांझा करदे ने. श्री सिंह ने हनोई विच वियतनामी रक्षा मंत्री जनरल फान वांग जियांग नाल

0: ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰੀਬ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
1: 3 ਸੇ 4 ਦਿਨ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜੇਗੇ ਔਰ ਅਭੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ 42-43 ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਔਰ ਹਿਸਾਰ ਜੋ ਹੈ 45 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਇਸਮੇ ਔਰ ਬੜੋਤਰੀ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ 3 ਸੇ 4 ਦਿਨ ਖਾਸਕਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਵੱਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਏਗੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੜੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਸਿਰਸਾ ਹਿਸਾਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਮਹਿੰਦਰਗੜ ਭਿਵਾਨੀ ਰੋਹਤਕ ਝੱਜਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਐਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਗਾ ਤੋ ਲੂ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਲਿਏ ਹਮਨੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਯੇ ਕਰੀਬ 3 ਸੇ 4 ਦਿਨ ਕਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਸਮੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ।
0: ਆਈਪੀਐਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਓਸਲੋ ਵਿਚ 3ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 90 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में 3री भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी काबिल तजदीद तवानाई दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौर में बैन अल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन आवारा कुत्तों को जिनकी नसबंदी और टीकाकारी कर दी गई हो वापस शेल्टर्स में भेजने के अपने हुक्म को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आईएमडी ने अगले 3 दिन के लिए कौमी राजधानी में शदीद गर्मी के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक 3री सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद काबिल तजदीद तवानाई दिफा पायदारी और तिजारत के मैदानों में नॉर्डिक मुल्कों के साथ मुल्की अहम शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर डेनमार्क के वजीर आजम मेती फरीदे रिक्सन फिनलैंड के वजीर आजम पेतिरी ओरपो आइसलैंड की वजीर आजम मोहतरमा क्रिस्टन फरोस्ता दोतिर और स्वीडन के वजीर आजम ओल्फ क्रिस्टर्सन भी होंगे। वजारत ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्डिक मुल्कों के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इख्तरा माहौल के लिए साजगार तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई पायदारी समुद्री मईशत दिफा खला के शोबों में भारत के ताल्लुकात के अहम पहलुओं की जानकारी देना है। भारत और स्वीडन ने जोर देकर कहा कि ताउन से आलमी गैर यकीनी सूरतहाल में मुश्तरका खुशहाली और एक पायदार मुस्तकबिल की राह वाजे होगी। एक मजमून में जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने तहरीर किया है, ये बात खासतौर पर कही गई है कि बढ़ती हुई जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी सूरतहाल तवानाई की गैर यकीनी फराहमी और इक्तसादी इंतशार के दौर में दुनिया को या तो तंग कौमी नजरियात में ढकेलने या फिर शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने के एक वाज मुतबादिल का सामना है। इस मजमून में जो आज एक कौमी रोजनामे में शाये हुआ है दोनों वज़ीरे आज़म ने कहा कि चूंकि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रही है लिहाजा बैन अल-अक़वामी ताउन और कसीर मुल्की निज़ाम की अकदार मजीद नुमाया हो गई है। मजमून में कहा गया है कि तरक्की के एक बड़े कायद और आलमी जुनूब की एक जिम्मेदाराना आवाज के तौर पर मुस्तकबिल करीब के लिए भारत के दो वाजे संग मील 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा

0: प्लेऑफ के लिए सिर्फ पांच टीमें हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी हैं। पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी फाइनल के लिए जदोजहद कर रही हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में ताउन को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गेर स्टोर, डेनमार्क के वजीर आजम मेते फ्रीदे रिक्सन, फिनलैंड के वजीर आजम, आइसलैंड के वजीर आजम और स्वीडन के वजीर आजम भी होंगे। वजीर आजम मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ओल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के दौर में बैन अल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन आवारा कुत्तों को जिनकी नसबंदी और टीकाकारी कर दी गई हो वापस शेल्टर्स में भेजने के अपने हुक्म को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आईएमडी ने अगले तीन दिन के लिए कौमी राजधानी में शदीद गर्मी के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा, जबकि लीग मैच अपने आखिरी मरहले में है। प्लेऑफ के लिए सिर्फ पांच टीमें हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend third India-Nordic summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo this afternoon. The summit is aimed at strengthening the country's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. According to the Ministry of External Affairs, Prime Minister Modi will be joined by Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, Prime Minister of Finland, Petteri Orpo, Prime Minister of Iceland, Ms. Kristrun Frostadottir, and Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson, for the summit. The Ministry said this summit will impart a more strategic dimension to India's relationship with the Nordic countries, especially in technology and innovation. Green transition and renewable energy, sustainability, blue economy, defence, space and the Arctic. On the sidelines of the summit, Prime Minister Narendra Modi today held a bilateral meeting with Prime Minister of Iceland, Kristrun Frostadottir. We now go over live to our correspondent, Sangeeta Godbole, who is in Oslo to cover the Prime Minister's visit. Sangeeta, Nordic countries are global leaders in green technologies. What concrete collaborations are expected with India in the renewable energy and the green hydrogen sector?
2: Well, sir, the Nordic countries generate over 90% of their electricity from fossil-free sources. India has its own ambitious green transition goals, so it would help in harnessing renewable energy sources like wind, hydropower, biomass, geothermal with the help of their expertise. The most concrete step taken towards the collaboration was yesterday when the India-Norway relations were upgraded to Green Strategic Partnership. It will help Norwegian companies to innovate and invest in sectors like green hydrogen, blue economy and circular economy. India will also be participating in Nor Shipping 2027 with an India Pavilion. This will ensure knowledge

0: 2 days. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: IMD has also forecast heat wave to severe heat wave conditions in Madhya Pradesh today. Heat wave conditions are likely to prevail over Bihar and Marathwada during the day and over Punjab, Haryana, Chandigarh for the next 5 days. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.2% up in afternoon trade today. The Sensex rose by 136 points to 75,451, while the Nifty added 42 points to 23,692 when reports last came in. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices. In IPL cricket today, Rajasthan Royals will take on Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilized or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टुन म्योल फ्रॉस्डॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
4: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों

0: इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके पांच देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भूराजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल

0: नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
1: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
2: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रूपये प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रूपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रूपये और डीजल 94.08 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रूपये और डीजल की 96.07 रूपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रूपये और डीजल की 96.11 रूपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक

0: लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं हूं आप सभी मित्रों का मित्र अजीत।
2: नमस्कार, और मैं हूं आप सभी दोस्तों की दोस्त वंदना। आप सबका सीआईईटी एनसीईआरटी के रेडियो प्रसारण उमंग में हार्दिक स्वागत है।
0: उमंग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है श्रोता मित्रों। और जैसा कि आपने सुना ही नहीं है, लेकिन बार बार सुना है कि हमारे रेडियो प्रसारण का नाम ही उमंग है।
2: उमंग,
0: तो उमंग यानी उमंग से आप क्या समझती हैं वंदना, जरा बताएं हमारे श्रोता मित्रों को।
2: अजीत,

0: उमंग यानी नया उत्साह, कुछ नया करने की ललक,
1: कुछ नया करने की ललक
0: और गर्मजोशी।
1: और गर्मजोशी, वाह बिल्कुल सही बताया वंदना आपने। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है कि आपने कहा उमंग यानी कुछ नया उत्साह, है ना, यही कहा आपने?
0: यस।
1: तो सवाल ये है कि ये नया उत्साह कब पैदा होता है?
0: ये पैदा होता है जब हम कुछ नया करते हैं, या नया देखते हैं, या नया सुनते हैं।
1: या नया सुनते हैं, बिल्कुल सही कहा वंदना, और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि आपने कहा जब हम कुछ नया सुनते हैं, देखने से भी उत्साह होता है, नया करने से भी होता है, लेकिन सुनने की बात मैंने इसलिए पकड़ी कि क्योंकि हमारे कार्यक्रम ही रेडियो कार्यक्रम है, और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे श्रोता मित्र जब हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं तो बिल्कुल नए उत्साह से भर जाते हैं, क्योंकि
0: क्योंकि उन्हें सुनने को मिलता है गीत, संगीत, नाटक और भी बहुत कुछ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अजीत, चलें आज के कार्यक्रम में।
1: हाँ, तो चलते हैं आज के कार्यक्रम में। तो आज का पहला कार्यक्रम है

0: काम और जिंदगी, शायर हैं फैज लुधियानवी। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है, आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: बरकतें हैं आज घर घर काम से, चल पड़ा दुनिया का चक्कर काम से। जिनको अपने फर्ज का एहसास है, दिल लगाते हैं वो अक्सर काम से। कामयाबी उनकी किस्मत में कहां, भाग जाते हैं जो डर कर काम से। खेत हो, स्कूल हो या फैक्ट्री, सबकी रौनक है सरासर काम से। काहिली तो जानलेवा रोग है, जिंदगी होती है बेहतर काम से। जिंदा रहने का सलीका है यही, मुंह न मोड़े कोई दम भर काम से। बैठकर बातें बनाना सहल है, असल में खुलते हैं जौहर काम से। कद्र करता है जमाना काम की, नाम पाते हैं हुनरवर काम से। दो घड़ी आराम करना चाहिए, जब फरागत हो मयसर काम से।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है। गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है हरभजन सिंह और उनके साथियों ने।

0: तो साथियों, कैसा लगा ये कार्यक्रम?
1: कैसा लगा?
0: अच्छा लगा ना?
1: लेकिन मेरा तो भाई एक कार्यक्रम से जी नहीं भरा। कोई और एक प्यारा सा कार्यक्रम सुन लें तो मजा आ जाए।
0: तो ये बात है। तो अब हम सुनते हैं कार्यक्रम
2: अपूर्व अनुभव।
3: सभागार में शिविर लगने के दो दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी ये। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: यासुकी चान को पोलियो था। इसलिए वो ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर ये बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने मां से कहा कि वो यासुकी चान के घर डेनिनजोफू जा रही है। चूंकि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने मां की आंखों में नहीं झांका। वो अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया।
1: मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पे चढ़ने देने वाली हूँ,
0: उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वो अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वो पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वो उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी।

0: यासु की जान भी हंसने लगा। तो जान यासु की जान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वो तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वो एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वो द्विशाखा तक पहुंच जाए। वो कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा,
1: अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो।
2: हाँ, कोशिश करता हूँ।
0: यासु की चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासु की चान को पीछे से धकियाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासु की चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे बैठी थी। अब क्या करे वो। यासु की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासु की चांद के मन में भी उत्साह था। वो उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े।
1: ठहरो, एक बात सूझी है।
2: वो क्या?
0: वो फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वो तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी।
1: देखो, अब डरना मत,
0: उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा।
1: ये डगमगाएगी नहीं।
2: ठीक है, ठीक है।
0: यासु की चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तर बतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासु की चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासु की चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वो उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासु की चान पूरी

0: शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वो ऊपर पहुंच गया।
1: हुर्रे हुर्रे।
0: पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी था में तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तोतो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया।
1: लाओ अपना हाथ दे दो।
0: उसके खुद के हाथ से वो बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चांद उसका हाथ थामे रही। तब बोली,
1: तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ।
0: उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वो सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था और वो खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तर बतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुक कर कहा,
1: मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है।
0: यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा,
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
0: उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था।
2: तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना,
1: और नहीं तो क्या?
0: यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे।
2: मेरी बहन अमेरिका में है।
1: अच्छा।
2: उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन।
1: वो क्या होता है?
0: यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था।
2: वो कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे।
1: अच्छा?
2: हाँ, वो कहती है।

0: टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है।
1: अच्छा, और क्या बताया तुम्हारी बहन ने?
0: उसने कहा,
2: तो चांद उस समय ये तो न समझ पाई कि यासु की चांद के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वो तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासु की चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था।
1: और क्या बताया तुम्हारी बहन ने?
0: उसने कहा कि टेलीविजन में लोग भी चलते हैं।
2: पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासु की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था।
3: मीडियम मिकमचे आकाशवाणी केर क्लिक करना जेनु दस खबर इन तो सोसु कसता आकाशवाणी श्रीनगर इकना बख्शीश बजट कसता ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के प्रोग्राम फचुई रिलीला गिर बजट।

ज्यादा 71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

मुखर्जी हमसे खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा और तजारत के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हम मनसब ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरतहाल के दौर में बिनअक्वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज से शुरू होने वाले चीन के दो रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं और सैम अल्टमैन और ओपन एआई ने कैलिफोर्निया में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत के शोबों में नॉर्डिक मुल्कों के साथ मुल्क की अहम शराकत दारी को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्वे के वजीर आजम जोनास गरेस्टो, डेनमार्क के वजीर आजम, फिनलैंड के वजीर आजम, आइसलैंड की वजीर आजम और स्वीडन के वजीर आजम भी शरीक होंगे। वजारत ने बताया है कि इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्डिक मुल्कों के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इख्तरा, माहौल के लिए साजगार तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई, पायदारी, समुद्री मईशत, दिफा, खला के शोबों में भारत के ताल्लुकात के अहम पहलुओं की जानकारी देना है। भारत और स्वीडन ने जोर देकर कहा है कि तआवुन से आलमी गैर यकीनी की सूरतहाल में मुश्तरका खुशहाली और एक पायदार मुस्तकबिल की राह वाज़ेह होगी। एक मजमून में जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन ने तहरीर किया है, ये बात खास तौर पर कही है कि बढ़ती हुई जोग्राफी और सियासी गैर यकीनी की सूरतहाल, तवानाई की गैर यकीनी फराहमी और इक़्तिसादी इंतशार के दौर में दुनिया को या तो तंग कौमी नजरियात में ढकेलने या फिर शराकत दारी को मुस्तहकम बनाने के एक वाज़ेह मुतबादल का सामना है। इस मजमून में जो आज एक कौमी रोजनामे में शाया हुआ है, दोनों वज़ीरे आज़म ने कहा है कि चूंकि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रही है, लिहाजा बिनअक़वामी तआवुन और कसीर मुल्की निज़ाम की अकदार मजीद नुमाया हो गई है। मजमून में कहा गया है कि तरक्की के एक बड़े कायद और आलमी जुलूस की एक जिम्मेदाराना आवाज के तौर पर मुस्तकबिल करीब के लिए भारत के दो वाज़ेह संगमील 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करना और 2070 तक सेहत के लिए नुकसानदेह गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम रोम पहुंचने वाले हैं। दौरे का मकसद तिजारत, सरमाकारी और टेक्नोलॉजिकल जिद्दतराजी में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर रोम में मौजूद भारतीय बिरादरी में काफी जोश खरोश पाया जाता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सद तोलाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का अदा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि यह इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जामे स्ट्रेटजिक साझेदारी का हम सुतून है,

لفظ ہے کہ براق جستجو کا میں ہوں راکب، براق

की सूरत देखकर भाग जाता है। किसी रिश्तेदार को फुर्सत नहीं मिलती कि वो अम्मू के पास आके बैठे। कितनी बार वो फोन पर कहती थी, रशीद अब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे रोज बुखार आ जाता है, खांसी बहुत बढ़ गई है, अकेले घर में मेरा बहुत जी घबराता है। मगर अम्मू आपकी बीमारी का इलाज यहाँ बहुत महंगा है, फिर घर में कोई नहीं रहता, आपकी देखभाल कैसे होगी। रशीद अम्मू को अपनी मजबूरी सुनाता था। अच्छा तो फिर हनी और तारिक से कहो मुझसे फोन पर बात कर ली, बच्चों को देखने को मेरा बहुत जी चाहता है। बच्चों को याद करके उन्हें रोना आ जाता था। वो बात यह है अम्मू कि बच्चों को उर्दू नहीं आती, इसलिए वो आपकी बात नहीं समझ सकते। अम्मू फोन रख देती थी, मेरी बात कोई भी नहीं समझता, ना बच्चे ना उनके माँ बाप। जब तीनों भाई अमेरिका चले गए तो अम्मू अब्बा के पास हमीद को छोड़ गए थे। हमीद का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, सारा दिन निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता, कभी स्टूडेंट यूनियन का झंडा हाथ में थामे सड़कों पर घूम रहा है तो कभी किसी सियासी पार्टी के साथ नारे लगा रहा है। फिर एक दिन सुना वो किसी पार्टी में शामिल हो गया है। तुम्हारे इम्तिहान में एक महीना रह गया है, स्टडी क्यों नहीं करते। अब्बा उसे बार बार याद दिलाते थे, अब्बा मैं इस साल इम्तिहान नहीं दूंगा, मुझे इलेक्शन का काम करना है। अब्बा बहुत खफा हुए। अम्मू ने रो रोकर समझाया, मुस्तकबिल के भयानक नक्शे खींचे, जब जिंदगी भर भाइयों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मगर हमीद अब घर बहुत कम आता था। फिर खबर आई कि किसी मुखालिफ पार्टी के मेंबर को मारने के जुर्म में हमीद गिरफ्तार हो गया है। फिर सुना वो आदमी हॉस्पिटल में मर गया। सारे मोहल्ले के लोग अम्मू और अब्बा को पुरसा देने आए। जाने कौन से गुनाह की सजा मिली कि हमीद इस घर में पैदा हुआ, अब उसे फांसी हो जाएगी। दोस्त रिश्तेदार ताजियत के लिए आने लगे, फांसी पर चढ़ेंगे हमीद के दुश्मन, अब तो वो हमारा हीरो है, हमीद के दोस्त कह रहे थे। उनकी पार्टी अक्सरियत में आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों तक इस मुकदमे की कार्रवाई चलती रही, फिर मामला ठप हो गया। एक दिन हमीद का एक दोस्त आया तो उसने अम्मू से कहा, कोई पार्टी वर्कर दो चार मर्डर कर डाले तो फिर हमारी पार्टी उस इलेक्शन का टिकट देने पर मजबूर हो जाती है। वही हुआ, हमीद के गुनाहों की लंबी लिस्ट ने उसे अपनी पार्टी का सबसे अच्छा लीडर बना दिया। अब देखता हूँ कि हमारे हलके का कौन वोटर है जो मुझे वोट दिए बगैर जिंदा रह सकता है। अम्मू और अब्बा दम साधे बैठे थे जब गले में फूलों के हार डाले एक जुलूस के साथ हमीद घर आया। अब्बा दोनों हाथों में मुंह छुपाए बैठे थे। वो अब्बा से गले मिलने के लिए झुका तो अब्बा नीचे गिर पड़े। फिर हमीद मिनिस्टर बन गया और जिद की कि अम्मू मेरे साथ दिल्ली चलिए, सरकारी बंगले में रहिए, गवर्नमेंट की कार में घूमिए, खूब ठाट करिए। अम्मू ने मिनिस्टर की अम्मी बनने के लिए कई जोड़े सिलवाए, नई चप्पल खरीदी, मगर वो मिनिस्टर के बंगले में फिट न हो सकी। नौकरों से गोश्त तरकारी का हिसाब मांगती, चौकीदार और ड्राइवर के सलामों के जवाब में जीते रहो सलामत रहो कहकर खुश होती, बंगले के लान में धूप के रुख खाट डालकर पापड़ सुखाने बैठ जाती। चुनाचे मिनिस्टर की बेगम ने उन्हें फिर वहीं पहुंचा दिया जहां वो सर झुकाए अचार मुरब्बे बनाने में जुटी रहती थी। तीन दिन हो गए, सब अम्मू के आस पास हाथ बांधे खड़े थे, बार बार ऑक्सीजन का ट्यूब ठीक करते। अम्मू को कुछ होने वाला है, इस आने वाले दुख को वो अपने चेहरों पर पेंट कर चुके थे। अम्मू बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर सबको देखती, हमीद नहीं आया, मेरा हमीद कहाँ है। शायद अम्मू का दम हमीद में अटका हुआ है। ख्वाजा भी कह रही थी कि हमीद दिल्ली में है, इस बार इसकी पार्टी को इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिली, अब हमीद मिनिस्टर नहीं रहेगा, ऐसे वक्त वो दिल्ली से बाहर कैसे जा सकता है। मगर हम सब ने अम्मू से वादा किया था कि उनके आखिरी वक्त। रशीद बहुत गुस्से में था, अम्मू बार बार आंखें खोलती। तुम सबको अपने पास इतने दिनों के बाद देखकर मेरा जी चाह रहा है कि बच्चों को अपने हाथ से बनाकर पुलाव खिलाऊं। इस वक्त भी अम्मू का दिल पुलाव में अटका है, अल्लाह तौबा। उनकी बड़ी बहू ने गालों को छूकर अम्मू से कहा, अम्मू इस वक्त यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए आप। मेरा हमीद,

फर्स्ट फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। धर्मनिगार थे आनंद बख्शी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने जब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में नदीम शर्वन की मौसीकी सजय नगमा फिल्म है राजा।

आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, दिफा और तिजारत के शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और स्वीडन के उनके हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन ने अखबार के एक मुश्तरका मजमून में आलमी गैर यकीनी सूरतेहाल के दौर में बैन अल-अक़वामी शराकत दारी पर जोर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन आज से शुरू होने वाले चीन के दो रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं और सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई ने कैलिफोर्निया में एलोन मस्क के खिलाफ मुकदमा जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद काबिले तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तिजारत के मैदानों में नॉर्डिक मुल्कों के साथ मुल्की अहम शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है। वजारत खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास गेहर स्टोर, डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म मेते फ्रीदे रिक्सन, फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म पेत्री ओर्पो, आइसलैंड की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा क्रिस्टर्न फ्रोस्ता दवित्र और स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टर्न भी होंगे। वजारत ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में नॉर्डिक मुल्कों के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इख्तरा माहौल के लिए साजगार तब्दीली और काबिल तजदीद तवानाई, पायदारी, समुद्री मईशत, दिफा, खला के शोबों में भारत के ताल्लुकात के अहम पहलुओं की जानकारी देना है। भारत और स्वीडन ने जोर देकर कहा है कि ताउन से आलमी गैर यकीनी सूरत हाल में मुश्तरका खुशहाली और एक पायदार मुस्तकबिल की राह वाज़ेह होगी। एक मजमून में जिसे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्वीडन के उनके हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन ने तहरीर किया है, ये बात खासतौर पर कही गई है कि बढ़ती हुई जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, तवानाई की गैर यकीनी फराहमी और इक्तिसादी इंतशार के दौर में दुनिया को या तो तंग कौमी नजरियात में ढकेलने या फिर शराकत दारी को मुस्तहकम करने के लिए एक वाज़ेह मुतबादिल का सामना है। इस मजमून में जो आज एक कौमी रोजनामे में शाया हुआ है, दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चूंकि अक़वामे मुत्तहिदा अपनी 80वीं सालगिरह मना रही है, लिहाजा बैन अल-अक़वामी तआवुन और कसीर मुल्की निज़ाम की रफ्तार मजीद नुमाया हो गई है। मजमून में कहा गया है कि तरक्की के एक बड़े कायद और आलमी जुनूब की एक जिम्मेदाराना आवाज के तौर पर मुस्तकबिल करीब के लिए भारत के दो वाज़ेह संग मील 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करना और 2070 तक सेहत के लिए नुकसानदेह गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम रोम पहुंचने वाले हैं। दौरे का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजिकल जिद्दत तराजी में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर वहां का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर रोम में मौजूद भारतीय बिरादरी में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में इजाफे का सिलसिला जारी रहेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वियतनाम के सदर तोलाम से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अहद का इरादा किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दिफा ने कहा कि इश्तराक दोनों मुल्कों के दरमियान इजाफा शुदा जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी का अहम सुतून है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम बाहमी एतमाद, मुश्तरक अकदार और दिफा, सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम में करीबी इश्तराक के मजबूत बंधन में बंधे हुए हैं। वजीर मौसूफ ने हनोई में वियतनाम के वजीर दिफा जनरल फान वान जियांग के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और वियतनाम के दरमियान दिफाई साझेदारी में इजाफे का जायजा लिया और बहरी सलामती, दिफाई सनअत, तरबियत और इलाकाई इस्तेहकाम में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले जनाब सिंह ने वियतनाम के बाबा कौम हो ची मिन्ह को उनके 136वें यौमे पैदाइश पर उनकी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज तकरीबन 90 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, एक हफ्ते से भी कम

0: 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामीन अब से लेकर रात 10 बजे तक अब हमारे निश्चयात मीडियम में 684 किलोहर्ट्ज़ के अलावा मीडियम में 1584 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम में त्रुग्या नगी शुश्बी नजबी किलोहर्ट्ज़, मीडियम में स्तोची नगबिया नगी शुश्बी नजबी किलोहर्ट्ज़, दोनों गजी मोबाइल एप न्यूज़ अमेरिका गजस आकाशवाणी करगिल का नाजरीन युत वक्स बुतुसो तो गसोंसुक दिरिन जकपो अंगारो माइल जी चुरगु दिरिन फ्रचुपो यत भी प्रोग्राम इन जुबेस लाखुरे गचायां यंती दोनों क्लिप्स युत गची जुने सलाम पु फ्रोत मचन सोशिक सखबचिक्स नल्ला दोया प्रोग्राम सदाकत लागु जुबेत दि प्रोग्राम इरख से केंगेन मजद सखम कुरानी तिलावत ना तर्जुमाला मुल्कन पेन हुज्जतुल इस्लाम शेख मोहम्मद इब्राहिम संको।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله يا عيسى

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा

0: समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले पांच वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The third India-Nordic summit was held in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark, participated in the summit. With the Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA, now in force, the summit aimed to deepen trade and

0: बसेर थप्पा बेमिंग ना प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करी लिखना थुक बजट
1: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए वाओ
2: फर्जी ऑफर से होशियार
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फायुली वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भारतीय मीमांग सुन्न यम्बो ग्रक्चाइन खुरी सिंह स्पेरान योंग मी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात इस्त्रोलिका आकाशवाणी स्टेशन गंगमास दी प्रोग्राम पो यम्बो नशिर बचाइन दो मेनमा दूरदर्शनी यूट्यूब चैनल दोना प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाई ईद उजक पजत योंग मी आदित्य जगा निमी बजा चुक्षी का प्रोग्राम मन की बात।

0: bumbu busan la hasar nga tidir face sang ata physical teacher jere nga ta me max sang ata busan ja thong tha bumbu na dun la yom ma tam chiare sa sa sa me sa bakshis
1: physical teacher la jo dare malam ata bumbu man kam jo na tir bumbu sa yong cha physical teacher la zaruri do pa ju kyunki bumbu sa jitna busan la jise last ta jo jitna bumbu na last yo school college ka chana physical teacher bomo busa cha dikese ngati jese co education
0: phun
1: la saba ju mena ju phun la bomo sang gala base jese ngati bomo la saba mana bomo phun mana gala chin pa ju ka sa ta ka bomo bomo lady teacher chana ko thik base sabcha chet ju ngati kargil so sala phen chana zaruri dup pa ju bomo physical teacher sang lepcha kyunki khwa personally mana do base coaching tang ma bomo na coaching khas kar bomo na coaching tang ma khurang dene gela chhin majwa taki kyunki physical education is a bahut se part bahut se yoga ko har cheez subject hoti taki us step ka bomon latang phya mana asan bomon la ja sabhi phya asan chacha to pa jacha na bomo zaruri to pa bomo sa physical line hai usse physical bpa mpa aaj to phd bhi mana ju che bahare bahar la yote jo mari phd pa bomo mamor ya sinar nazar ek jammu nazar ma ati de rasam je to आगे कोच उन्हार गलत कुछ कर सके
0: हाँ बख्शी सर गरीब रेस योगा मोज़ पसर नती बमुन इस ग्योक्स नागा तू यंग स्पेक दुन लासों से यंग स्पेक स्टेचर जरे खुराक माना जाशिंग माना नती सोसाइटी ना बाल लाजरे उसमें चीतो शिखा सामने फ़ासल
1: दुगा माँग आता मेन पुना आता एक्सरसाइज पुछ हमें दूसरा आती जानी जानी रे सिस्टम पों आते जान जाचा सी गाचीज पुछ जाचीन गाव जाचा मेन तो मेन जो याला चीज सी देने छामे छाना दोस्त बस एक दिन आता एक्सरसाइज हम मचना आता प्रॉब्लम मामो छिन जो या योगे गांग मचना छाना मेन पुछ जो आता दरे योगा माने एक एक्सरसाइज छिन जो मैंने यहाँ चांग मैंने एक अच्छा खास एक्सरसाइज इन जो आता मैं ना आता काम में मना काम में कहता से गो सकते अलग अलग एक्सरसाइज योग यहाँ योग जुआ दोनों आते मोत मोत मना या सुबह शाम यहाँ आते हाजो गला बस अगर योग बना का तो जो मना आता काफी बॉडी आती फिटनेस सीखिया आती बाकी इंटरनल बॉडी में हर चीज सीखिया आता फानका ने छेन पज ताकि योग आता हर चीज हर मूवमेंट बचस ना जैसे आता ब्रीथिंग एक्सरसाइज ना कोविड योगे ब्रीथिंग अन प्राणायाम जरे काफी फायदा सोमिन जो आता जैसे कोविड आता सांस की काफी प्रॉब्लम सो छाना बहुत फायदा सोमिन मजु छाना आता जो एक्सरसाइज बचा था कि आती बहुत कुछ जैसे युद्ध जो आता सफाई योगा खुरियाम आना बहुत से अनना मिलोम जरें ची बहुत कुछ आता आती सफाई इंटरनल दें दे सफाई वे दें ना आती लगा युद्ध जो चं दे योगा दें ना आते प्रोसेस बना यम वो आते एक्सरसाइज ना और दे योगा दिखने यम वो आती जानी का आते कि गाजान पुजार वोशीन का मैं ना जो मन पर मेन पर आता जो एक्सरसाइज बखान जैसे एक्टिविटी बखान ला मेन पर ऑयली चीज ना फ्राइड चीज ना दे काफी बंद बार वोशीन जो है और टेबल जो ना दे तो एक्सरसाइज बना आता फिजिकली मेंटली पूरा आता मेंटेन लोशीन फिट लोशीन मजे कैसा
0: बख्शी सर जरूर लेकिन अर्गेलामोस लादरिंग आता हसर सुकूल होने का आती प्रवास भी सुन ला असेंबली का आता एक्सरसाइज सब जा या दो ताम चीज हसा दुख सर बख्शी
1: दो माना ये सभी का जो जैसे आता पीटी हर सुकूल के जो आती फिजिकल टीचर फिजिकल टीचर लस पुखरा जाए जो मौत फोन ला माना सिर्फ जा प्रायर पोते जरे नाजो खुदता दो में छा रोशन कम से कम आधा एक घंटा छा रोशन जो मौत पे खोल एक्सरसाइज पम फ्रून ला नॉर्मल मास मास डिस्प्ले एक्टिविटी हो छिन जो नॉर्मल एक्सरसाइज फ्रून ला चलो हार्ड एक्सरसाइज था मान छे में जो है नॉर्मल काम लपस पर चेस एक्सरसाइज होते जो नॉर्मल ओदो ताम रोशन जो है जैसे एरोबिक के नॉर्मल म्यूजिक का सिस्टम ही काम चाहे फ्रून ला इंटरेस्ट हो चुकी फिर म्यूजिक का गेम का देने का तो एक्सरसाइज का तो जो है वन टू थ्री और तो म्यूजिक का तां से खुन ला यन में सब पो एक्सरसाइज और दे यंबो एक्सरसाइज ना चाहे यंबो खुन ला सवाक कुछ वन टू थ्री फोर और तो का खुन ला सवाक से वन टू थ्री रंग खुन ला यों चाहे सो ठीक बसे वन टू थ्री फोर जर चास पाँच यों चाहे जो हाथ सुनते फ्रून ला यंबो खुन ला दे एक्सरसाइज पाँच छेद मास डिस्प्ले मास पीटी दर चिंज है और दे टेबल नांग बार रोशन जो दो मान जरूरी ने असेंबली का छाना ताकि फ्रूनी जा एक देने के लोशन जो कि जगह उनके एक्सरसाइज शिक्षा से हल्के दर्शन ना हल्के खुन ला लूस पना खुन आगे जाके کوئی پرابلمس ماں میں دیکھن ماں باڑیاں مومنٹ سی تھا سے گلوس پر کسا
0: بخشی سنی ارز جانا تو انتی پر بس بھی سن لا یا انتی مومو بچھن لا فیس سنگ چوک فرنج یو تا سر بخشی
1: Je mène pour des étudiants les tests de degré collège qui ont été admission faire. Je suis sportif

0: जो है, क्योंकि स्पोर्ट्स से अच्छा मेन तो जो अति जैसे आज अति फ्रून जैसे बाहर दिल्ली छे जम्मू छे मैं जो अति फ्रून ला जैसे अति बाहर छे जो इतनी की जिनके फैसिलिटीज में इतना जो स्पोर्ट्स ही नेशनल चीज या तो मतो बना या स्टेट ची मतो अपना या कोचिंग ची मचाना रहा एकेडमिक नंबर एर देर कॉलेज छापिन मार दरे कारगिल खुरी का जो अति कारगिल खुरा कॉलेशियन स्पोर्ट्स से ऐसा एफिलेशन स्पोर्ट्स से जैसे एआई यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ना एफिलेशन स्पोर्ट्स से सोंस दरे अति इंटर कॉलेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक से यूनिवर्सिटी लेवल के बाद इंटरनेशनल तक से मौका छा जाती फ्रुन्ना। दूसरा यहाँ पे कोचिंग भी जैसे चीज पढ़ाई ना मुखरी कोचिंग पर स्पोर्ट्स से कोचिंग बेक समना दिका गचा कोचिंग कोचिंग हर गेम में अच्छी डुल बच्चू है दोनों हर चीज़ फैसिलिटी दे लेटेस्ट इक्विपमेंट जैसे लेटेस्ट जैसे आर्चरी इंटरनेशनल आर्चरी जरे दो गांव में अच्छी लगाए दे अवेलेबल हो
1: बख्शी सर यार इसलिए कि ना फैसला बसे मूल दे पर यार फैसला बसे चिंग यार आती ना कतो गा आती कॉलेज ला मिशा खानी फिर बस भी सुच चाहे दो चुंगी से हम लोग सौ से रिया अपना बेकार लूसे होना कतो खुआ कॉलेज का यों से दी तो आदि देना ना हिस्सा लेन मंगन जी ना सर
0: कैसा है जो दे आची देखो से देने चीने जो जैसे यहाँ देखो से डुले ना जो जैसे आईटीआई का सोंसे और खची खमाना जो डिप्लोमा बसे ना डिप्लोमा बसे रिया अपना दरे 12 इक्विवेलेंट डिप्लोमा 12 तो सना ग्रेजुएशन बाय एंड दे तो नोटिस पे यों से जो ताकि दे तो ने दही चीचीस में ना 12 गया ना फंग से होते हैं तरी यहाँ एडमिशन लेन में इंचिन जो है यों से दिका कोचिंग मतलब साख पाँ यंबो ग्रेजुएशन पाँ बच्चा सों जो यंबो कोई दिन ना चचा सों खा यंबो कुरी ग्रेजुएशन पाँ चचा छे जो खा दोना स्पोर्ट्स सी दोना एनसीसी दरे गांव में उत्पन्न जो ना ती कॉलेज के छाने को गांव में आंखों यों में इंचिन जो कैसा
1: बख्शी सर यारिस लेकिन ना फेसबुक बस मूल कसानी यंग सरपति जी यारिस फेस संग आती अच्छी नमून लहा जो गाँव निस माता गेम्स यंग लोग यंग स्पर्श ने लाइन पे खुदून लोग में कुआं लेकिन उसमें चीज उसी शेष दून ला यारिस का तो फ्रेंड जी साले बख्शी सर
0: दो चार में जो अति सबसे के दिन देरी सबसे के छेद देता दून ला ये जो अता अति स्पोर्ट्स अति में ना जो रंग स्पोर्ट्स किट्स गोने रंग में ना जो छाना को चंग इशू छज में रंग मिसाल अति मिसाल दिन देख के यूनिफॉर्म चिंग अति दिन देख गोने या स्पोर्ट्स से चंग दिन में पजो है छाना चंग इशू छचा मेट की आतम की प्रॉब्लम्स यों है आगे जाके दो तो चंग मेट जो रंग ये स्पोर्ट्स अति गुंचा यों देजू में ना वो गला गुंचा स्पोर्ट्स अंकुला दिला गुंचा यों देजू दो गोने खोआ से हैं जिन चंग को मिसाल आतम ज्यादातर इशू आतम अति हिजाबी का या दो तो शिक्षित है दो तो इशू चंग मेट आतम पूरा रंग स्पोर्ट्स जैसे आतम दाहोनी में ना जो देंदे गोने या स्पोर्ट्स कुरी दाहोनी पूरा पूरा बंद बस बींस होत पर जो है दे किट बींस होत गोवा तक चेस पूरा दो बस डाउन पर गोने छाने दो सो बस आता बायन चेत पर जो चा इशू छछा में दो बाकी आता ना दुखन सा ना जो रंग से चलो मिसाल शिमी सा ना रंग इस सबसे एक मोमेंट एक डुल बारे बेन दुपार गोशिन जा चलो शिमी सा ना आगे जाके तस मैं यहाँ सपोर्ट्स एक्टिविटी बाय एंचे में इतना या मैंने पार्टिसिपेट बाय एंचे में था मिसाल हाथ शिमी सारा है सांग योगा रह गया हल्का पुल्का ले डूल यान में सब डूल भी कोशिश शिक बार होशिन मजबूर मैंने डूले डूल बार एक बैंड पर होशिन कैसा
1: बख्शी सर रिस लेकिन ना फेस पर बसे मुझ यहाँ से चीयरा उजू थेरी मुझे दिया सलाम अलैकुम
0: बख्शी जो या सलाम अलैकुम
1: दरी सक पे गेंतिस चिस्वेग न्यानी चुत पीन डॉक्टर मुर्तजा अली सरिकना कस्ता प्रोग्रामी छांसी का स्तुत खे फ्रुचुएत आखोन जीशानिस कत्यानुक
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

0: dak sa sak pa yun tis program yun yun pin sa git ponifia program fachukhan pa inmen sakina bano program producer Gulzar Hussain media mukha ng jess Akashwani Kargili kana zirinot
1: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए वाओ
2: फर्जी ऑफर से होशियार
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ट्राइबल्स की बात करेंगे तो वो आदिवासी जंगलों में रहते थे और जंगल ही उनके लिए सब कुछ था, उनका घर ही वही था। जंगल के अंदर होने वाले तमाम चीज़ों पर मुनहसर थे, तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1865 में जब अंग्रेज़ों ने जंगलात को लेकर पहली मरतबा हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा जंगलात को लेकर जब कानून बनाए, तो इन्हीं आदिवासियों को जंगलों के तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने से रोका गया। 1865 में जब पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बन गया, तो इसके बाद इसको अमेंड किया 1878 में, और जंगलात को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करके रिजर्वेड कैटेगरी में सबसे बेहतरीन जंगलात को डाल दिया, और उन जंगलात में उन बेचारे आदिवासियों को जाने की इजाज़त तक नहीं दी गई, और उन जंगलों से वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ना वो अपने भेड़ बकरियों को वहाँ चरा सकते थे, ना अपनी ज़रूरत के लिए कोई फ्रूट्स, कोई रूट्स वहाँ से कलेक्ट कर सकते थे। फ्यूल वुड भी वहाँ से कलेक्ट करने की उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। तो आदिवासियों ने उनके खिलाफ, ट्राइबल्स ने आवाज़ उठाना शुरू किया, रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद पीजेंट्स की अगर बात करें, तो पीजेंट्स और फार्मर्स को ऐसे फसल उगाने के लिए कहे गए जो फसल उनके खेतों की जरखेजियत को ख़त्म कर देते थे, जैसे कि इंडिगो और ओपियम। ये दो ऐसे फसल होते थे जिनके बहुत डीप रूट्स होते थे, और इन्हीं फसलों का बहुत ज़्यादा डिमांड यूरोप में था। तो यूरोप में इन फसलों को जब देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो अंग्रेजी सरकार ने इन फसलों को हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी फार्मर्स और पीजेंट से ज़बरदस्ती इन फसलों को उगवाया गया, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन की जरखेजियत ख़त्म हो गई। तो इन पीजेंट्स और आर्टिजन्स ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, फिर पीजेंट्स और फार्मर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। जहाँ तक आर्टिजन्स की बात करेंगे, तो इन आर्टिजन्स में वीवर्स आते थे, पॉटरी मेकर्स आते थे, तो इनसे भी सस्ते दाम पर काम करवाते थे। उनके सर्विसेज को सराहते नहीं थे, उनका कोई वैल्यू नहीं किया जाता था, उनकी कोई कदर कीमत नहीं थी। उस समय हिंदुस्तान के कॉटन पूरी दुनिया भर में मशहूर थी, और वही कॉटन के कपड़े यही आर्टिजन हिंदुस्तान में बनाते थे। इतनी मेहनत के बाद अंग्रेज बहुत कम दाम देकर इन कॉटन को खरीदते थे, और इसको इंग्लैंड लेके जाते थे, यूरोप के दूसरे मुल्कों में लेके जाते थे। इसके बाद पहली मरतबा अंग्रेजों के खिलाफ जो बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस देखी गई, वो 1857 में जब रिवोल्ट हुआ 1857 का। तो हालांकि ये बगावत जो है, अंग्रेजों ने इसको सिपाही म्यूटिनी यानी एक सिपाही बगावत का नाम दिया, लेकिन सिर्फ सिपाही नहीं, इसमें सारे हिंदुस्तानी लोग, अलग अलग तबके के लोग इसमें शामिल थे, और भरपूर साथ दिया सिपाहियों का। सिपाहियों की जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उनको वो मुहैया किए हैं, उनको फूड दिए हैं, खाने दिए हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया, उनकी उन ज़रूरतों को पूरा किया। तो बड़े पैमाने पर पहली मरतबा 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ ये रेजिस्टेंस मूवमेंट देखी गई 1857 के रिवोल्ट के फॉर्म में। इसके बाद 20th सेंचुरी जब शुरू हुए, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को तकसीम किया गया, तो इस तकसीम में बंगाल के खिलाफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट्स चलाए गए, जिसके चलते आम लोगों ने बाहर से आए हुए तमाम किस्म के प्रोडक्ट्स को बाइकॉट किए, उनको जलाए, जिसमें लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल था। और उन्हीं लोगों ने फिर फॉरेन क्लोथ्स को बाइकॉट करके इंडियन क्लोथ्स, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी की वापसी होती है 1915 में, और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अदम ताउन तहरीक चलाया गया, जिसमें एक दफ़ा फिर आम जनता ने, हालांकि ये तहरीक जो है शहरों तक और कस्बों तक ही महदूद रही है, उसमें भी लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ किसी भी किस्म की कोऑपरेशन देने से साफ तौर पर इनकार किया है। तमाम किस्म के इंस्टीट्यूशंस को, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बाइकॉट किया है। फिर 1930 के डिकेट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चले, सिविल नाफरमानी तहरीक, जिसमें साल्ट मार्च भी आते हैं, वहाँ भी लोगों ने बड़ा साथ दिया, बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। और फिर 1940 के डिकेड में, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया महात्मा गांधी ने, हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक, इस तहरीक में ही लोगों के इस कोऑपरेशन की वजह से अंग्रेज़ मजबूर हो गए, अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े, और आखिरकार 1947 15 अगस्त को कड़ी मेहनत के बाद, बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो जाते हैं। और इन्हीं लोगों के, इन्हीं लीडरान के, जिसमें काबिल ज़िक्र जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, और इसके अलावा अनगिनत ऐसे आम लोग थे जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां पेश की, तो इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं, एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं।
1: महात्मा गांधी की हिंदुस्तान आमद के बाद आज़ादी की तहरीक में अवामी शराकतदारी एक नई बुलंदी को छू गई, और उनका अजीम एक कारनामा ये रहा कि महात्मा ने हिंदुस्तानी

तशद्दुद, सत्याग्रह और सच्चाई की हथियारों से लैस करके मुल्क वतन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब एक ही था। लिहाजा हमें इस बात को तस्लीम करना होगी कि भारत की आजादी किसी एक शख्स, जमात या तबके के मरहूनी मिन्नत नहीं, बल्कि यह पूरे मुल्क की अवाम की मुश्तरका जिद्दोजहद और काविशों का नतीजा थी। गांव के किसान से लेकर शहर के तालिबे इल्म तक, खवातीन से लेकर बुजुर्गों तक, हर तबके ने अपनी तरफ से कोशिशों में सुरअत लाने की बेपनाह पहल की। बिलयकीन ये अवामी शराकत दारी ही थी कि जिसने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दे। अजीजी सामीन, आज भारत की आजादी की 79वीं जश्न मनाते हुए भारत की जंग आजादी हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और मकसद से जुड़े रहने का सबक देती है, पर कौम को इर्तिका की तरफ ले जाने का पहल और तरक्की नीस इलाकाई और मजहबी यहाँ तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है, इसका हर सूदो जिया तेरा भी है मेरा भी है, वक्त का है ये तकाजा मुत्तहिद हो जाए हम, कब से दुश्मन आसमां तेरा भी है मेरा भी है, सोच तो गुलशन की बर्बादी का क्या होएगा हाल, सोच तो गुलशन की बर्बादी का क्या होएगा हाल, शाखे गुल पर आशियां तेरा भी है मेरा भी है, हम वतन ये गुलसिता तेरा भी है मेरा भी है। इन्हीं आशार का सहारा लेकर हम आज के फीचर को यहीं पर समेट रहे हैं। अपने मेजबान सज्जाद अली शुजात और प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन को रेडियो फीचर की अगली निशस्त तक दीजिएगा इजाजत। अगले महीने फिर एक नई और अहम मौजू पर मुश्तमिल रेडियो फीचर के साथ आप सामईन से फौरन सौती मुलाकात की उम्मीद के साथ आप सभी से रुखसत चाहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।

0: सुबह मॉर्निंग में जाके डीसी साहब से हमने बोला वी आर फुल्ली एग्रीड विद द लैंड विच यू हैव डिमार्केटेड नियर एयरपोर्ट और उस एयरपोर्ट के सामने बट द एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ द लैंड मस्ट बी इंक्रीज्ड। पहले उन्होंने 3 कनाल का लिखा था तो हमने उसको 3 की जगह पे हमने 10 कनाल का हमने लिख के उनको दे दिया, तो वो बोल रहे कि कपल ऑफ डेज में इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में निकालेंगे वो।
1: एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल गुलाम मोहम्मद गोयतियानुक सादक चेमीना डुलन योत्खन मुहिम पे यां छिरचिगी दिरिंग बरुन अपर चांचे गम मलेंख्योंस दे वसलर गोसके मेत पे पोलुन नतारुन सखथेने मिमा सुनला डुल बिमीना लंपु सांसां बचाव नैंबो मलसान गंगमर गेल अवसे लखमर्चो से इंजरे असे रेन जाबरा म्युनिसिपल कमेटी माली महकमा दुनो टेलीकॉम ऑपरेटर ने खाकुरु ने ड्राइव चिक ड्राइव प्यांग खाक लेंस या इंतजामिया दी जाती गोम्बान सगस बसे लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना गोजुक बसखन मुहिम प्यानुक छिर सिरिका मीमा सुनला सहूलियातुन फोचुकचा नयंबो यंबो मीमा से फंथो गनुक्स्तान पुलस भचा इंजरे असे रेन लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख विनय कुमार सक्सेना लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन पे नाजोस बोमो ने एसएचजी सखी जमू विलेज ऑर्गेनाइजेशन पे कना स्कूली बोमो न लाख सुम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड ख्यों में महीना ही जिंता सेन गांव नेशनल हेल्थ मिशन पे नाजोस मुल्लाक चौगे रेने का खोचा सिंजरन लेफ्टिनेंट गवर्नर इस दी इजिन पुजबा से बोमो निर्देलुक फुल लक्षिप शन छचा सिंजरन दी सैनिटरी पैड सख नमजा न जोम्बोचन ही होते इंजरे सिरेन लद्दाख रामो रेल एरिया से कौंसल करगिल गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखो निजरिंग कुर्बथंग और गो अनमेटफूनी स्कूल बिल्डिंग पुना रेजिडेंशियल हॉस्टल फैसिलिटी तालुक्स बेमीना सिक्स कोर बस दिवस लखों स्कूल क्लासरूम होटल कमरान दुना ए सहूलियात ने तालुक्स बस दी बिल्डिंग उन गो अनमेटफून न जोम्बर चो जरे खकचन खसकोन तांस देवन चोसला दीची की आगा सिलजैन हॉस्टल सिक क्लासरूम घारिया बोजरेन हफ्ता सो मिनाल जोंस हॉस्टल पु नोर बस फंक्शनल अर्चो अर्गो सुखजरांग असर बसों होमजार को अनमित फ्रून सुकुल सुकपाल है चुकवी मीना ट्रांसपोर्टेशन सहूलियत पंग्रल सिर बेजरे अठर छत बस डिप्टी कमिश्नर द्रास इम्तियाज काचो सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्रास विशाल अत्री नयम्बो युलबू गम्यूली जिक्स खोर बसे जल जीवन शक्ति मिशन इनाल जोंस थोंशी सहूलियत उन्हें इलता लुक्स बसेन दिवासला ऑफिसर उन गम्यूले मीमांस उन नथोक से थोंशी स्कॉलर कबलाज बर्दों ने मंगुनला इन्हें मुतालोका खखुर उनला निष्माओ न वक्स इनाल जोंस फलते बारगो सुखजरे इससे बसों देवरियन डिप्टी कमिश्नर मीमांस उन्हें छोसना रुति स्ट्रोनुक स्कॉलर जैसा नशमांगुन सगा इन्हें निर्खे अपना इरीगेशन फ्लड प्रोटेक्शन महकमा ने अम्बो लेने ग्योस्पा फलते हुए अर्थियांग मांगबास यंग ऑफिसर ने गम्यूली मेडल स्कूली सिक्स कोर अम्बास सबमर्सिबल पंप ऑन ग्योस्पा फंक्शनल अर्चुए जरे टर छत अब्बासीन लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख विनय कुमार सक्सेना सर गला बसे लद्दाख पुलिस अनुक लस्खा पांचुक पमीना लद्दाख पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड पु यंग से मीना इस इंतासेन दिटर छत पु पुलिस हेडक्वार्टर लद्दाख से प्रपोजल पुनाजम से मलेंख्योंस गवर्नुक इंतजामी गिरजाउन दुना दुनमा बोर्ड मेंबर खचिक मेथखान इन मिंजरे एस से रेयोत तख्स पे मीना जर न बोर्ड सब इंस्पेक्टर न कांस्टेबल दुना फॉलोअर केडर इस तोमा मलसा उन शख्स काम मीना इम्तिहान उन्हें घृल सिर भचाइन देवन दि बोर्ड पुला डीआईजी लेह करगिल रेन श्री कौशल कुमार शर्मा चेयरमैन एसएसपी ट्रैफिक लद्दाख विकास कुमार मेंबर सेक्रेटरी दुना सीनियर पुलिस ऑफिसर उन मेंबर इजोस्ते का घोयत बचाइन जोनल फिजिकल एजुकेशन तेसरु मोहम्मद सादिक शेख गोयत या दिची की जोनल थोगे अरसेनी तकरीबात उन्ना छिर्च चेमीना फिजिकल एजुकेशन मास्टर उन फिजिकल एजुकेशन टीचर उन दुना रहबरी खेल टीचर उन्हें ग्रफ्सिक मलियंख्योंस दिवासला ग्रफ्सिया जिले थोगे कर सेनु इस दुरुन मलियंख्यों मीना लोकसो अरसेनी मीनार घेल अबसर सेखन उन यांग मीफेस बे फ्योसपुला लक्षिप्स बसे फ्रोमाचिक तकरीब उन छिर सिरिका ग्रल सिर बसे थमा थोन चुक परगो सुगजरे मुताल्लुका खखुर उन लखस को उन तांस दिन इन मिन दरसक पेपुर की खबर उन गाइजिन शजदवस यश यू खुदा नश सामानी फकरियां।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: फायुली वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी भारत की मीमांग सुनना यम्बो ग्रकचा इन खुरी सिंह स्पेरॉन योंग मी आदित्य जगा निमी बजा चुकशी का प्रोग्राम मन की बात स्त्रोलिका आकाशवाणी स्टेशन गंगमास दी प्रोग्राम पो यम्बो नशिर बचाइन दो मिन मा दूरदर्शन यूट्यूब चैनल दोना प्रसार भारती एप न्यूज ऑन एयर का दी प्रोग्राम पो नशिर बचाई ईदू जगपजत योंग मी आदित्य जगा निमी बजा चुकशी का प्रोग्राम मन की बात।
2: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोलन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगमो दरने यंतिस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंदर चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजत 8700014242 का।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर
4: 8700001 4242। सुनो ना।
3: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001 4242।
4: ओ 8700001 4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001 4242 पर।
5: मीडिया मेकर मचेस आकाशवाणी करगिल कना जेने और वस्पो खबरें नितो सुसु कसता आकाशवाणी श्रीनगर कना उर्दियम खबरें नदब सरान प्रचुगे द्रिलेला गेरबाजे।

0: सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने से पहले मुकम्मल करें। बाद में उन्होंने कई प्रोजेक्टों का दौरा करके काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। दरियासना नासिर असलम वानी ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा, ईद उल अजहा और मौसम गर्मा के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इस साल अगस्त में किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके में मुनक्कद होने वाली सालाना मिचेल माता यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो यात्रा के आसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल करें और श्रद्धालुओं को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखें। जम्मू कश्मीर बैंक यूटी के मुख्तलिफ सेक्टरों को फरोग देने, नीज लोगों को आला मैयार की बैंकिंग सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है और इस बैंक को जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी ढांचे में एक कलीदी अहमियत हासिल है और बैंक हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की नई मंजिलों को छू रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: बैंक का जो कोर एक्टिविटी है वो है डिपॉजिट्स लेना और उन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में लोन्स देना। तो डिपॉजिट्स जो हम लेते हैं उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं डिपॉजिटर्स को, और जो हम लोन देते हैं लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं और ये मेन कोर बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ का ये एक हिस्सा होता है। इन सबको जब हम उस इनकम से माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होता है जिसपे हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, और टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिक्लेयर करते हैं। जो 2363 करोड़ का प्रॉफिट बताया इस साल का, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। बेसिकली यही है बैंकिंग बिजनेस।
0: मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मौसूफ के साथ हमारे शोबे खबर की तरफ से तैयार करदा सिलसिलेवार प्रोग्राम की दूसरी और आखिरी किस्त आज रात 8:30 बजे नशर की जाएगी। उनके साथ हम कलाम होंगे डायरेक्टर न्यूज और शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपोजिशन जमातों पर इल्जाम लगाया कि वो अपने हकीर मकासिद के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियों को अवामी ताईद हासिल है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ राबता बनाए रखें। दरियासना पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने एक प्रेस बयान में कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की कयादत में हुकूमत ने एक महदूद वक्त में जम्मू कश्मीर में कोने कोने में तामीर तरक्की का एक वसील जाल फैलाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, पार्टी के तर्जमान आला तनवीर सादिक और कई दीगर लीडरों ने आज सौरा जाकर वहां मरहूम शेख अली मोहम्मद के अहल खाना के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा से आज जम्मू में कई अवामी वफूद मुलाकी हुए और अपने अपने मसाइल उनकी नोटिस मिलाए। सत शर्मा ने उन्हें उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। उधर सत शर्मा की निगरानी में राजौरी और नौशहरा पुंछ में पार्टी की तरफ से एक महा प्रशिक्षण वर्ग का इनेकाद किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट तर्जमान इंजीनियर साहिल बशीर बट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह दहशत पसंदी और इसके ढांचे को खत्म करने के लिए एक कौमी मिशन के तौर पर जारी रहेगा। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहेगा जब तक न तमाम दहशत पसंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सियाहती सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मजीद इकदाम करने का मुतालबा उनके सामने रखा। जीएम शाहीन ने इस मौके पर कहा कि सियाहती सेक्टर को दोबारा अपनी पटरी पर लाने के लिए एतमाद पर मबनी मजीद इकदाम करने की जरूरत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन नई दिल्ली ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू साहपत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स के लिए दाखिले का ऐलान किया है। आईआईएमसी नई दिल्ली की वाइस चांसलर डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौर ने कहा है कि इस कोर्स में 30 निशस्तों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 26 मई है और इम्तिहान यकुम जून को लिया जाएगा।
2: आईआईएमसी की जानिब से फराहम की गई इत्तला के मुताबिक दाखिले इम्तिहान दिल्ली कैंपस में होगा। शोबे उर्दू सहाफत पिछले एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से उर्दू के साथ साथ दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए वर्किंग प्रोफेशनल तैयार कर रहा है। एक अहम बात यहाँ यह है कि डिपार्टमेंट में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है। अगर आपके अंदर भी सहाफत के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो देर ना करें और आज ही अपना

0: हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं हाजिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी आज कल शुमाली यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो भारत और यूरोप के दरमियान कई शोबों में ताल्लुकात को एक नई जहत देने की फकीदुल मिसाल कोशिशें कर रहे हैं। स्वीडन के शहर गोथेबर्ग में यूरोपीय सन्नती गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात एक नए सन्नती और स्ट्रेटेजिक दौर में दाखिल हुए हैं, इसलिए यूरोपीय कारोबारी दुनिया को भारत के तरक्याती सफर में फाल शराकतदारी करनी चाहिए। वजीर अजम ने गोथेबर्ग शहर को यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग और जिद्दत की रुख करार देकर कहा कि 140 करोड़ आबादी वाले भारत ने भी पिछले 12 साल में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को मॉडल बनाकर डिजिटल इंडिया तामीर किया। भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबरा कॉन्फ्रेंस में मुतलिका बिरादरी से खिताब करने के दौरान वजीर अजम ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों मुल्कों के शराकतदारों को चाहे कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के लिए 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हो जाएं। वजीर अजम ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट करार देकर कहा कि इसमें काफी वसत की गुंजाइश है, जिसमें आलमी सतह पर बढ़ती हुई तवनाई जरूरतों, आब हवा में तब्दीली, काबिल तजदीद तवनाई, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवनाई को हासिल करने की कोशिशों को भी शामिल किया जा सकता है। वजीर अजम ने अपने हम मनसूबों और मुख्तलिफ शोबों के सरबराहन पर वाजह कर दिया कि भारत आज सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम रखता है, जहां मसनूई जहानत, फिनटेक, स्पेस टेक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बायोटेक और मोबिलिटी के शोबे तेजी से तरक्की कर रहे हैं और यूं भारत आलमी टेक्नोलॉजी तखलीक का मरकज बनता जा रहा है, जिसमें शरीक होकर यूरोप और भारत हम मगीर ग्लोबल तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 1100।
1: अभी तक आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू में खबरें और तबसरा सुन रहे थे। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। सामीन, शब के 8 बजे हैं, पेश खदमत है प्रोग्राम फौजी वायु के लिए।

अभी बरसात फिल्म ने आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को सुना। नगमे निगार थे समीर और मौसीकार थे नदीम श्रवण। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं जीत फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और सोनू निगम ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है।

मीडियम पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं सामन। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि

0: एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। No compromise, no double standard.
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026

0: पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाली आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: टेस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को

0: सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।

0: addressing the plenary session of the 79th World Health Assembly in Geneva, Mr. Nadda said, India's accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. The India Meteorological Department has warned of severe heatwave conditions in northern India. The weather agency forecasts heavy rainfall in southern region. The IMD has issued a red alert for warm night conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha till Thursday. The weather agency has forecast heatwave to severe heatwave conditions over Delhi, Punjab, Haryana and Chandigarh for tomorrow. Meanwhile, the weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahe and Lakshadweep till the 21st of this month. In cricket, the Indian men's squads for an upcoming one-off test and three-match ODI series against Afghanistan were announced today. Shubman Gill will continue to lead India in both formats. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the test team, replacing Rishabh Pant, who has also been dropped from the ODI squad. Shreyas Iyer returns to the ODI side as vice-captain. Spinner Manav Suthar and pacer Gurnoor Brar have received maiden test call-ups, while Prince Yadav has been included in the ODI squad for the first time. Pace spearhead Jasprit Bumrah and senior all-rounder Ravindra Jadeja have been rested for the series. In IPL cricket, Lucknow Super Giants were 213 for 2 in 18.4 overs against host Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans and Sunrisers Hyderabad have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की

0: सस्टेनेबिलिटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनरल मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनरल मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तसादी शराकत दारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनरल मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
0: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी जरूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा ताउन की जरूरत पर जोर दिया क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल है, बिलखसूस तनाजियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक है। वजीर आजम मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद 5 मुल्कों के अपने दौरे के 5वें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वजीर आजम के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
2: वजीर आजम 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि ये दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली क्लीदी शराकत दारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनअती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकत दारियों का ऐलान किया जाएगा क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा 5 बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
3: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
1: इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर अहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के

आकाशवाणी करगिल जो शिना प्रोग्राम पुनर्गीत सो मखोरो मुख्तार जाहिद आज को प्रोग्राम की मुठोहानोस प्रोग्राम कुंडने जारो का सजारे मां सयारे दीदी जारे तो ने मफेरे बुटर ही गुटमार की सलाम रस्तमोस जूथमोस।

0: से सिंपल भी है चुनी या मेडिकल रेस या क्यों का ऑपरेशन ला उस लो इसलिए मुझ में यानी मतलब फील्ड जो है सोशल वर्क ही चुना शा क्योंकि सोशल वर्क दस मोर इंटरेस्ट है इसलिए से सिखा रहे हो
1: कौन ने ग्रार का सजा रहे कि बेस पशन इसकी छाल बाल से बीए थे ना या बीएससी थे ना चार पुश काल यार सोशल वर्क एक नाव तजुर्बा का सलो आसिफ साहब कि स्कोप चके या एक फील्ड एक नाई फील्ड एक थो गिनीगा कि तुरे गाइड थोने थने यार दोस्त ये रिश्तेदार और अजीबे कि अंतु से सोशल वर्क के थे तो सदे तुरे नि गाइड था कोया सुलवानी का रजीगा तुम इष्ट भाई
0: काका मुस्तफा सलो सो से था नंबर सोशल वर्क कही था वो क्यों से सरे मतलब अच्छा नॉलेज लाई है ताई बार रुजा से समर रजो कि जो सोशल वर्क कही थे बाकी कंपटीशन ला हूं मतलब पाकिस्तान को नहीं सोशल वर्क बढ़िया बनू सलो सक्सेस कर मुझसे था बस डॉक्टर मुर्तजा का म्यो मुंह बाल विल तो से समर रजो रस गाइड डालो अतए थे से
1: अच्छा कि ना ये फील्ड एक सोशल वर्क के जब तुरे बोथे डॉक्टर मुर्तजा या मुस्तफा साहब थोन मरजी का तो रने काफी कंट्रीब्यूशन हम ना अलाके जा यानी एजुकेशन बारे जा तो जैसे जमान दुर काफी काउंसलिंग का थना गाइडेंस का थना और शायद तुर का काउंसलिंग थे वे उस जमाने में तो जम्मू फत पतले सासिब साहब और तोमे तोमे नौकरी जो इंतकालस तो खैर असो जमाना जगह आज तो तकरीबन पंजलाई बी काल मुठोरे जवान बाली करके तो हमसो या करगिलो ए नाले तो असो जगह ही जेल जा आर्ट्स या साइंस रजीगियस और थो सोशल वर्क रजीगा सोशल वर्क के बीए थेगा तो अनु कॉलेज कौन असलो
0: कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी असरी एगनो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से समी थे
1: इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी तो सोशल वर्क के बीए थेगा और स्कोप काफी यानी सुपाशनस की एक तो तुरंत तजुर्बा का सोशल वर्क थो निकारियो तो सदो वजी थो पशीगा नी स्कूल का कॉलेज जाए प्राइवेट स्कूलों जक से लाई तवज्जा देना प्राइवेट स्कूलों जा अहमियत क्वालिटी एजुकेशन ही लाई हंदा की गवर्नमेंट स्कूलों जहाँ अनिवार्य जगह जगह तो मिस्ट नहीं दा
0: मुसवान चका सने कारगिल अमूमन सदे प्राइवेट स्कूल लाई प्रेफरेंस देना जक से हलन कैसे बड़े मिडिल क्लास या अमीर जो भी हो सिर्फ प्रेफरेंस प्राइवेट स्कूल ही देना क्योंकि प्राइवेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का को करिकुलम एक्टिविटीज लाए ही
1: अच्छा
0: इसीलिए लोग सिलाई प्रेफरेंस देना प्राइवेट स्कूल ही होनी कौन में स्कूल अब जैसे खोजन ही नुश तो अच्छा एजुकेशन नुश को करिकुलम एक्टिविटीज का नुश इंफ्रास्ट्रक्चर का नुश तो इसलिए सर गवर्नमेंट में स्कूल प्राइवेट स्कूल आए फर्क ही इंफ्रास्ट्रक्चर का को करिकुलम एक्टिविटीज प्राइवेट स्कूल लाए थे ना
1: अच्छा यानी मतलब आनी आसिफ साहब की जग से सिर्फ एजुकेशन हो यानी सबक टकना मगर को करिकुलम एक्टिविटीज अगर बेस टकेगी इस तुने गवर्नमेंट स्कूल लाई है अशबाले कि फैसिलिटीज जो है ना गवर्नमेंट से अचाक देगा नो को तनी कचाक नोम निखत छाल बाल हने से यानी गवर्नमेंट स्कूल खतने मगर दूसरी तरफ बेस टकेगी इस तो प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन सही क्वालिटी है दियो बेन मगर फीस और मसला का हमने साथ में फीस गलाई महंगा हानी
0: तो इसलिए रजिनर अमीर तरीन इंजाक से ही नौ रुपए का ये लाए ही थे जिस उन्हें सबक लाए सर बढ़िया देना या मतलब क्वालिटी एजुकेशन लाए बढ़िया देना थे इसलिए प्रेफरेंस लाए प्राइवेट स्कूल ही देना गवर्नमेंट अच्छा थे नहीं मुझे
1: अच्छा
0: हाँ गवर्नमेंट स्कूल अमूमन आई गरीब बात जो फट हो बिन सुनो ही भी अमूमन ऐसे करगिल आए ही माहौल हुए
1: तो लेल भाई आसिफ साहब की दिल्ली शहर जा आज जो दो तीन साल मुठो रहे यानी प्राइवेट स्कूल बूटे बंद थे रही गवर्नमेंट स्कूल आते और सदो गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी अश लाई बस की हनी और आई जेल जा असन यानी एजुकेशन सेक्रेटरी रखे गए तो लद्दाख यूटी जगह कोते स्कूल ट्रेक लाओ मशहूर हने तो छो वाला के जा कर किता वो हनो तू अकी तो यानी स्कूलों हालत जो के हनी गवर्नमेंट स्कूलों
0: जब बस रजन होनी अच्छा खास एक ना से अच्छा इंटरेस्ट नहीं देना ले अच्छा वकोर होगा अच्छा खास इंटरेस्ट नहीं रानू के दो तीन साल एक जो मतलब सर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे बढ़िया भी नहीं यार टीचर वीचर का सब उन्हें बढ़िया है ना हाँ कुते सब उन्हें टीचर का लाभ टीचरों का कमी असली तो अच्छा खास इंटरेस्ट नहीं देना ले बालू जा को तो फिर भी काफ़ी चेंज भी नहीं
1: छो जमाने जो आसो जमाने दोनों जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है सुनो अश अनु दौर जा सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है सीबीएसई यानी तो सीबीएसई नॉर्म से हिसाब से जा टकेगी तो एक स्कूल को बिल्डिंग का चाकोना हो जी स्कूल के लेटरिन वो सिस्टम एक टॉयलेट सिस्टम एक वो सिस्टम एक टकेगी तो यानी करके तो या हमसो वाला को

0: ये दिशो जा अनि स्कूल या फैसिलिटी मौजूद है निदा
1: कोते नुश अच्छा फिर भी इनकम्प्लीट है फिर प्रॉपर नुश
0: अच्छा
1: लाई शॉर्टेज है हर चीज बाथरूम वॉशरूम मेरे मतलब मुद्दी जगह बुजिन भी नहीं तो शॉर्टेज है यानी कोते का ट्रक क्यों नहीं जो करे गवर्नमेंट का ट्रक क्यों नहीं
0: अच्छा गवर्नमेंट से तो पूरा फैसिलिटी जो हनो आसिफ साहब कि कोने मिडिल स्कूल खनो या प्राइमरी स्कूल खनो तो रसनो आहाते मजारिस नहीं इर्द गिर्द कचाक जमीन का वजह से तो पूरा रजी है नहीं कमेटी तो पे पब्लिक से इंटरेस्ट भी इंग्लिश कि थो बाल अगर तू पढ़ा लिखा हनो तू मुलाजिम हनो मो पढ़ा लिखा हनो मैं मुलाजिम हनो तो मियो बाला सर प्राइमरी स्कूल ने भी गवर्नमेंट स्कूल की बेनस आदि असोच ले लेने की भाई वो है जहानस दा सुम जहानस दे तुरे काफी दश हनी हुमसर का बोझू तू अनु असनो कर से आखिर असम को बाकी दिशोर का तू बोझनो सोशल वर्क तो काफी अनुमस पशमोस तो सदो स्कूल का ने स्कूल एजेक तो फर्क पछा दा
1: फर्क तो है ही फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही सर रहा फर्क है क्योंकि नहीं सिटी मुशो भी आप पसंद है दूर दराज बहुत अच्छा खास फैसिलिटीज कर रहे प्रोवाइड भी इंग्लिश तो अनी अनी सिटी मुशो भी तो अंदर पूरा मतलब सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड भी नहीं है तो दिन रात फर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर गई और सारे टीचर विचर का बढ़िया है यहाँ
0: अच्छा ओ. तो अनी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी बोनी वजह जो खनी
1: यहीं से सर अन गाँव मोच नजाक सिनी मतलब लाइट सपोर्ट ने बोई बिस्तर इंटरेस्ट ही नहीं बिल्ला किन बामला नॉलेज सब को बड़ा नॉलेज रहने थे बिल मतलब शौक ने थे बिल्ला किन बामला सबक दुनिया बिन थे समा रहे थे बिल्ला निशरे बिल्ला शौक ने थे बिल
0: एक तो वजह आ गए आसिफ साहब की माँ माल वकी का पढ़े लिखे निश सिरे झाल बाल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कह रहा था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कह रहा था से वजह इंफ्रास्ट्रक्चर कमी सचिवे था या सरकार से जनों कार्यो काउंसलिंग का गाइडेंस और प्रोग्राम के थोनो जी पेरेंट्स वाले आज तक कथा प्रोग्राम बनो दा
1: जहाँ तक असी गामा तो अभी तक बिलो ही निश
0: अच्छा
1: अभी बिलो ही निश है क्या बताना खरे बहुत बेनु मैंने देखा है मतलब मुस्तकम आने बेनु है

0: तो उससे से नाना नाला एजुकेशन सेक्टर है जो हरी क्वालिटी एजुकेशन है जो हरी का खेल कूद देगा शायद उस तवज्जो ने बयात
1: इंशाल्लाह मैं तो सबको यही उसके बाद सपोर्ट्स का गेम्स बुरा बेसु इन्वॉल्व छाने की कोशिश थी मुझे
0: अच्छा
1: इंशाल्लाह क्योंकि खुद ज़माने जा सपोर्ट्स गेम्स का एक एजुकेशन फर्स्ट प्लेटफॉर्म है बिल सारे का मतलब स्टूडेंट से या बात बात से पार्टिसिपेट थे ना अच्छे पर अब शो किनिया किनिया किनी से सब बेसु पूरा प्रोवाइड थोड़ा से इंशाल्लाह इन कोशिश ही है
0: स्कूल एजुकेशन है जो दरो खजी आसिब साहब बेस मुश्किल फोन अनि आउटडोर गेम्स है अनि थो पशानो करगिलो बाकी कुयो जो अनु अलाका करकित या का सरिया आज खरबू गे हो मसड़क कुयो जा ग्राउंड टुराई कमी है नहीं एक कुई बेस पशनस शरी में ले आया शारजा थे मशहूर है निकास रजा तो सद सो से टूर्नामेंट के जक शुरू ना
1: सर्वे तो हर साल टूर्नामेंट दूर छे खेल चार ना सर ओपन है तो कोचा कौन होगा मतलब क्रिस्टिको का टीम होती है द्रासो वजी हर अलग को टीम है सर पार्टिसिपेट नहीं तो हर साल सर्वे तो दूर छे टूर्नामेंट साल खेल थोड़ा
0: अच्छा तो अनि बाकी कोई जगह कर कितरे या लाते क्या या हर दस जगह अजा कोई ग्राउंड ने वो वजह है क्या कमेक असने छाल बाल असने जवानी चाह कुरी खेल तो बिन तो अनि से जेक सोचे कोशिश थे बिलखुसूस असने काउंसलर हनु या अलाको जाको रिजेक्ट थे रुजू थे कोशिश थे दा
1: असली फर्स्ट असली गांव तो कमी लाए ही तो करके ला तो आ जगो जा गांव तो कमी लाए ही धालन के आदे सने बस लाए बढ़िया खेलते ना मतलब ताई मतलब फोना रहे कि वो
0: अनि को
1: आगे
0: मशहूर है नहीं थे मैं पढ़ो दोनों करके तो टीम एक एक लाई बड़ी टीम है खानी
1: ओ असी करके तो टीम उतना शीना किंग से लेन तो
0: अच्छा
1: पिछले साल फाइनल ऑफ वही रनर अप
0: हाँ
1: शती लेकिन फिर भी गांव नुश आनी पार्टिसिपेट है ना फिर ये फाइनल हो जाफे ना तो बहुत बड़ी बात है
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल और फाइनल लेवल
1: ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टिसिपेट है फाइनल ऑफ वाला
0: अच्छा तो ग्राउंड निश
1: गांव ने शालन की फिर भी आठ डब पानी बहुत कम हो थे ऐसे बात लाओ इंटेलिजेंट है
0: तो थी जे
1: काबिलियत
0: गुजारिश
1: है
0: गुजारिश की जे खानी दानी असने यानी अलाको अफसरी हाँ या सपोर्ट सो जे के डायरेक्टर साहब हनु या यूथ यूथ हो डायरेक्टर साहब हनु यूथ एजुकेशन हो या काउंसलर साहब के जरिए जे गए थे तो थी
1: मैं सब रसना जैसे सुने काउंसलर साहब हूँ या बाकी दिगर रिकारी बोर्ड हाँ सुने कि अन्य रिक्वेस्ट है कि असुआ गांव तो पाए हूँ सुधा से किन फसल जैसे बड़े आई थे तो असे अन्य बालों रे खेल छोनी रो बस छोन
0: कौन है
1: थे
0: पड़े होंगे
1: असली ओम लोटे शु जगह कहीं सारे गांव जैसे पाए हुए हैं सो लेकिन अब बड़ा होते शबक होते पाए नहीं जरूरत है ये बस
0: अच्छा
1: तो काउंसलर साहब का बाकी सपोर्ट यूथ ऑफिसर है ना अंदर रिक्वेस्ट है कि और गांव जैसे बढ़िया से पाइन था कैसे बहुत सारे की खेल थे आगे उन जो आगे जिन टूर्नामेंट है डिस्ट्रिक्ट ने स्टेट या नेशनल से प्रकार से बहुत से पार्टिसिपेट थे
0: यानी कि आशीष साहब थी रजनी आने की करकिते ग्राउंड एक तो परेजी हनो थे थोड़ा जा तो सो ग्राउंड ए मजीद क्रम थे सर सुम एक तड़ी बटी बटी लांग थे हुन थे शबक होते रहे थी गुजारिश नहीं कौंसलर साहब रहेगा बाकी असने मुंतजमी ने रहे किरे
1: सपोर्ट
0: से सियासी बतन या चाहे सरकारी बतन तो बाकी सोच से कोशिश होना जी आसिफ साहब जवान से एक तंजीम एक प्रहे डिस्ट्रिक्ट यूथ सपोर्ट्स और बाकी काउंसलर साहब या डीसी साहब तक ये ग्राउंड रिफंड एक देखा जोनी कोशिश होना जी तो बेसिर्फ करके तो मोटे तुम खरबो अला करेगा ग्राउंड में खरबो का शिमशोटी में गलाई मशहूर है इतना अशबाल एज एक टूर्नामेंट गया जो इतना डीएलएस वाले जा अनिवार्य एज रास्ता
1: जैसे खरबू हैं शिमशाई आत के बाद लाओ बढ़िया हैं लाओ काबिल ना किसी से कमता है टूर्नामेंट ले दूर चेक जीत बिला ना गांव उठो ना सुनरे फैसिलिटी जगह ने फिर का आने वाली पार्टिसिपेट होनी बहुत बड़ी बात है तो जैसे खरबे हैं शिमशा हैं रियलिस्ट रियलिस्ट शिमशा बड़ी टीम है कहीं तो सुबह पिछले साल ये ला आने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट दूर चे टूर्नामेंट एक साथ जीत बिजारी
0: अच्छा
1: तो आग बाल लाओ बढ़िया है खेल चुनी इंटरेस्ट है
0: अच्छा
1: आगे बुजोनी वार ही आनोरे तो मैं सब अन्य रिक्वेस्ट है सारे का गांव देखते आनोरे मतलब मदद थे पार्टिसिपेंट ने दागरे से आगे टूर्नामेंट रहे थे नहीं
0: यानी कि बेस पर्सनस की कोई जा ई लीगा ट्रेड लीगा बाकी चीज तो प्रनस कि नला नला असी यानी बुया थनी काउंसलर साहिबानी कच्चा खाने तो नहीं हो मसला को चाहे सो छगोनियो बतन या खारी बियम बटो या करके त्या चोरस कंबो कि नला नला अन इंफ्रास्ट्रक्चर खेल कूद होगा ग्राउंड एक या दास एक जेक सन है ना वे चाह करो रे रणो मुस्तकबिल समुटरियोनी रणो मुस्तकबिल मुठो छोनी चा माठियो ना जी तो आसिफ साहब तुस तो मुली लो खेन निकले आशो स्टडी जा आलो मुस्तुटे लाई लाई यूथ मोस तो आखिरी जेक बहुत एकदम था तुस कौन ने करे
1: मैं यानी रिक्वेस्ट है असने जवान रे या असने बाल मुला रे कैसे से लाई लाई मतलब क्वालिटी एजुकेशन मतलब गिन

0: जो कोई से भी मतलब कोनो को प्लेटफार्म रिन होला जहां तो क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन बगैर सपोर्ट से गेम्स आएगा विसे पार्टिसिपेट थिन और नो फ्यूचर जो नो मतलब बन मतलब बो नहीं है यार नो ड्रीम हूं सो इससे हासिल थिन चाहे वो सपोर्ट है बतन गेम है बतन चाहे जो एजुकेशन है बतन
1: और वक्त खेन जाया नहीं थे
0: और मतलब बेकार यू नो टाइम मतलब जाया नहीं थे बेकार चीज हो जाए
1: अश बेकार चीज तनी कहानी आसिफ साहब मोबाइल का बाकी चीज या टाइम लाओ जाता ना जवानी से तो आओ तुझ कर दो ना कि मोबाइल जल लाए ने भैया बिल तो खेल कूद जो हिस्सा गिना मोबाइल गेम जो हिस्सा कम गिना
0: मोबाइल वोबाइल लाए छोड़ा कि जिंदगी मतलब खराब क्यों दुमा को टाइम का वेस्ट इससे बेहतर मिलते रहो पार्टिस गेम्स थे या सपोर्ट से पार्टिसिपेट है से बढ़िया भी
1: जूथमोस जारे का सजा रहना सलो आसिफ हैदरी साहब सोशल वर्कर का सलो तूने जवाने खनु रो और रुस चमाटे चुहानो इलाके में जा एक नियत के ना जवाने की कि इलाके में जा स्कूली श्रबो के बेन से सिटाइली पशीजन तूने सुनो मजा ताली में साथ साथ खेलकूद गई और सो स्कूलो इर्द गिर्द एक ग्राउंड एक भाई सो ग्राउंड जो चाल बाल से तुम तुम्हें खेल तुम्हें पसंद नहीं गेम थे और शायद उस खजी कोई कोई जा अगर सो ग्राउंड टिक बिल तो सो ग्राउंड में जा पुलेरी खजी डिस्ट्रिक्ट लेवल जा लद्दाख लेवल आएगी और नेशनल टीम में जा हिस्सा गिने तो डारेगा सजारे अजू को मनाचो तुम्हें सांबे मुठो देता हूँ

डॉक्टर सपयंती शीना प्रोग्राम ने न्यू पिन पुनर मीडिया में कंग जस आकाशवाणी कर गिली कना जे न्यू तेम बंग चीज दिन फ्रच पर प्रोग्राम ने वक्त पर थमा थन अस कया अंत हम तक तू दे मत पुंग जा इजाजत छस दे बस यजु अल्लाह हाफिज जय हिंद।